नमस्कार, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 7 तारीख, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है।

0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन

0: नेपाल पहुंची हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगो विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हरा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन बार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। आज का चिंतन, ये थी भक्ति रचनाएं। अब सुनिए देशगान। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा, हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता पेश किया जाएगा सुबह 6:45 पर। पुराने फिल्मी गीत सुनिए भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में सुबह 7:00। सात बजकर 30 पर कार्यक्रम होगा हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा पहले सुबह 8:15 पर और फिर दिन में 2:00। चित्रलोक, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं पहले सुबह 8:30 पर और फिर रात 8:15 पर। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर हमारा कार्यक्रम आज का अखबार पेश किया जाएगा सुबह 9:30 पर।

मिनट पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल, दिन में 11 बजे सुनिए आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। दो बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे, आपके फरमाइशी फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे मनचाहे गीत कार्यक्रम में 3 बजे। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक आई लव यू का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5:20 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। 5:30 पर कार्यक्रम होगा सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस कार्यक्रम में समाज सेवक संदीप कुमार से बातचीत सुनवाई जाएगी। 5 हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। कार्यक्रम विशेष जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे। हवा महल कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेत्री लीना चंदावरकर पर केंद्रित रहेगा और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा सफर सुरीला सा। 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम पॉप टाइम। दोपहर 12:05

हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश,

परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है, आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं, अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य।

की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्री राम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता
1: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से वाई एम म्हात्रे की भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता वर्ष 1986 में संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुत करता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार पंडित जी।
3: जी नमस्कार।
2: आप हमारे देश के एक उच्च कोटि के कलाकार हैं और हमारे शास्त्रीय संगीत के सभी श्रोताओं से बहुत ही परिचित हैं, फिर भी आज प्रथम बार सुनने वाले हमारे कुछ श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय कराने हेतु यह जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे संगीत सीखना शुरू किया और किन गुरुजनों से आपने तालीम पाई है।
3: मैंने संगीत 7 साल की अवस्था
2: जी हाँ
3: में शुरू किया। 1927 का मेरा जन्म ईयर है और 2 अक्टूबर
2: वाह
3: जिसको आप भूल नहीं सकते
2: हैं, गांधी जयंती की
3: जी। और सबसे पहले
2: जी
3: कैरकट्टे नागेश राव
2: अच्छा
3: बम्बई में ही थे, उनसे मैंने प्रारंभ किया। 2 साल सीखे
2: जी।
3: उसके उपरांत पंडित ओंकार नाथ ठाकुर
2: अच्छा बहुत अच्छे,
3: इनसे भी मैंने करीब 1.5 साल
2: जी
3: सीखा
2: जी।
3: उसके बाद मेरे

0: बंधु श्री चिदानंद नगरकर, अच्छा, जो कि यहाँ भारतीय विद्या भवन के प्रिंसिपल थे, उनका मैंने सबसे पहले जब गाना सुना
1: जी
0: तो मैं प्रभावित हुआ।
1: अच्छा।
0: और फिर मैंने ये जिद पकड़ी कि मैं जिनसे उन्होंने तालीम पाई उन्हीं से मैं सीखूंगा। और उन्होंने सिखा था स्वर्गीय पंडित एस एन रातनजनकर
1: जी,
0: और वो लखनऊ में थे प्रिंसिपल, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा
1: जी।
0: और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने भी आज्ञा दे दी।
1: क्या बात है।
0: और 11 साल की उम्र में मैं लखनऊ गया और वहाँ मैंने फिर विद्या हासिल की।
1: तो इसका मतलब ये है कि आपको बचपन से ही संगीत का शौक रहा है
0: जी।
1: और जैसे आपने रातनजनकर जी से भी तालीम पाई है, रातनजनकर को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की तालीम
0: जी।
1: थी और उस्ताद फयाज खां की तालीम थी
0: जी।
1: तो आपके गुरु परंपरा से यह हमें ज्ञात होता है कि आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर तीनों घराने की तालीम आपको सीना बसीना प्राप्त हुई है
0: जी।
1: बड़े भाग्यशाली हैं आप।
0: खैर, ये तो ही है, लेकिन वो जमाना अलग था जबकि बहुत कम सुनने के लिए
1: जी हाँ,
0: मिलता
1: हाँ,
0: था गाना
1: हाँ,
0: उस्तादों का। लेकिन आजकल का ज़माना यह है कि रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए या म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके ज़रिए काफ़ी सुनने के लिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो हमारे नौजवान उनके लिए यह बहुत आसानी हो गई है। इसी तरह से मैं जब सीखता था तो मैं काफ़ी लोगों को सुना करता था उस्तादों को, तो उसमें उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद फयाज खां साहब, उनका गाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए उनकी छाप
1: आपके
0: कुछ मेरे गायकी में अधिक मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं।
1: नहीं, वो सही बात
0: है। हालांकि मैंने उनसे डायरेक्ट तालीम पाई नहीं है, परंतु वो हमारे गुरु जी के, रतनजनकर जी के गुरु थे
1: जी। हाँ।
0: तो कुछ ना कुछ बातें तो वहां से मिलती हैं, आती हैं। और चूंकि मेरा लगाव रंगीला घराना
1: जी हाँ
0: से था
1: जी हाँ,
0: इसलिए मैंने वो चीज़ें कुछ हासिल करने की कोशिश की।
1: आपके गायकी से हमारे जो श्रोतागण जो आपको सुनते आ रहे हैं लगातार, उनको ये ज्ञात होता है
0: जी।
1: तो पंडित जी, पिछले आप 40-50 साल से संगीत की सेवा आप कर रहे हैं और आपने मनन चिंतन किया है, तो आपके दृष्टिकोण से हमारे रागदारी संगीत का भविष्य क्या है? मतलब हमारे युवा पीढ़ी के जो कलाकार हैं, क्या वो परंपरा का आदर रखते हुए विद्या का प्रदर्शन करते हैं?
0: देखिए, ये बहुत विकट सवाल आपने पूछा है।
1: मतलब मैं भविष्य पूछ रहा हूँ
0: जी।
1: जैसे
0: भविष्य
1: की सुना है,
0: अलग है और अभी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी काफी निर्भर होता है। हमारे जो युवक कलाकार हैं, वो मैं समझता हूँ उनके उम्र में हम जब थे
1: जी,
0: हम यानी मैं और मेरे गुरु बंधु, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनका IQ बहुत अधिक
1: है
0: जी। और वो अगर सीखें तरीके से तो मेरे ख्याल से हम लोगों से भी अधिक आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आजकल हुआ ये है कि उनको काफ़ी सुनने के लिए मिलता है, अलग अलग घरानों की तालीम वो सुनते हैं
1: जी हाँ,
0: और सीखते दूसरा घराना।
1: अच्छा अच्छा। तो
0: फिर ये व्यवसाय बनाने के नाते भी कुछ सीखना शुरू करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जब ये व्यवसाय का जब सवाल आता है, उठता है
1: जी,
0: तब उसमें व्यवसाय में हमारा लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं
1: जी,
0: या उपशास्त्रीय संगीत
1: हाँ,
0: या फिल्मी, वहीं पर आप उनका व्यवसाय जो है वो जुड़ा रहता है, जिससे कि वो आमदनी उनको अधिक मिलती है, तो उनका मन जो है वो बट जाता है और एक ही जगह वो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते
1: जी हाँ।
0: इस वजह से वो विद्या हासिल करने के लिए जो एक लगन चाहिए
1: जी हाँ,
0: एक तत्परता चाहिए और एक मेडिटेटिव क्वालिटीज जो माइंड में होनी चाहिए वो बन नहीं पाती है। इस वजह से उनका गाना कुछ हद तक पनपता है और बाद में वो स्टेल हो जाता है, क्यों कि उसमें विद्या जो है उसका अभाव लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और विद्या जब तक नहीं है तब तक अपना आर्ट जो है
1: जी, वो
0: कला उसका, वो पनप नहीं पाती है,
1: उसका विकास नहीं होता।
0: विकास, उत्थान वगैरह अगर करना है तो विद्या मतलब सीखना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है और साथ साथ रियाज भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये तीनों चीजें। और आजकल दिन ऐसे हैं, गुजर रहे हैं कि अगर वो कोई चाहे भी हमको प्रैक्टिस करें
1: जी,
0: तो उस तरह के साधन उनको उपलब्ध नहीं होते। ये सब कठिनाइयां हैं। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमारा रागदारी संगीत कुछ दूसरा मोड़ ले। मेरा कहना ये है
1: जी
0: कि जब डेढ़ डेढ़ घंटा लोग एक एक राग को बरतते थे और

0: सुनने वाले सुनते भी थे, अब दोनों में फर्क आ गया है। सुनने वाले डेढ़ घंटा सुनना एक राग को पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह से गाने वाले जो हैं या बजाने वाले वो डेढ़ घंटा तक एक राग को बरतना उनमें वो हाँ उतना धैर्य
1: नहीं है।
0: हाँ ये कहिए, तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि से कुछ मोड़ ले लेगा
1: जी हाँ।
0: और हो सकता है कि अच्छे अच्छे राग जो है
1: जी हाँ।
0: वो 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक बड़े अच्छे तरह से निभ सकते हैं और निभा लेंगे, और वैसा तो आजकल नौजवान गाते भी हैं बजाते भी हैं।
1: और पंडित जी, पाश्चात्य श्रोताओं के मन में हमारे संगीत के प्रति किस प्रकार की भावना है?
0: 5 साल पहले मैं जब गया तो वहाँ हमारा वोकल म्यूजिक
1: जी
0: है ना, गायन कला
1: जी हाँ,
0: वो उतनी रुचिदायक उनको लगती नहीं थी
1: जी हाँ।
0: फिर मैंने अब की बार जब मैं गया तब काफी 6-7 यूनिवर्सिटीज में
1: आपने निरूपणात्मक व्याख्यान दिए हैं,
0: निरूपण मैंने उनको ठीक ढंग से समझाया।
1: अच्छा,
0: इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड
1: जी हाँ
0: इन इंडियन म्यूजिक
1: जी हाँ,
0: यहाँ से लेकर मैंने प्रेजेंट डे राग संगीत तक
1: जी हाँ
0: मैंने उनको मुख्तसर में सब चीजें बता दी। काफी 3-3 घंटे मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने पसंद किया
1: और सुना,
0: ये सुना और पसंद किया। इसका मतलब ये श्रेय मैं मुझको नहीं, मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ, परंतु हमारे भारतीय संगीत की कला जो है
1: एक विशाल कला है, मगर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो आपने उनको सही बातें समझा दी हमारे संगीत के बारे में, जो सही जानकारी होनी चाहिए, जिस दृष्टि से उसे देखना चाहिए, उस बातें सब आपने बता दी हमारे श्रोताओं के लिए। आपने अपना मूल्यवान समय देकर जो आज यहाँ उपस्थित रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।
2: सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से YM म्हात्रे की ये भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं दिनकर कैकिनी का गाया सावन।

विविध भारती के खजाने से। आज आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक दिनकर कैकिनी से की गई भेंटवार्ता और तत्पश्चात उनका गाया सावन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।
1: आपकी चाय
2: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
1: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

छोटी बहन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर सुबीर सैन की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत शबनम फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
3: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
4: पल पल दिल के
3: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
5: हम इंतजार करेंगे।
3: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: छोटे नवाब इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी लता मंगेशकर की, शैलेंद्र के बोल, तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने। और अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है अंतराल का।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। फिल्म ससुराल का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे से।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गोदान फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, अनजान के बोल रविशंकर की बनाई तर्ज।
1: के पतवा सर के डोले मनवा।

0: अब एक मस्ती भरा गाना भूत बंगला। इस फिल्म से मन्ना डे और साथियों के स्वरों में हंसरत जयपुरी की रचना आर डी बर्मन का संगीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

याद रहना चाहता।

मन्ना डे और साथियों के स्वर में भूत बंगला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। हमजोली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में, आनंद बख्शी की बोल, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभिनेत्री लीना चंदावरकर का जन्मदिन उन्हीं ढेरों शुभकामनाओं के साथ। आप सुन रहे हैं उन्हीं पर फिल्माए गीत। कार्यक्रम है हम है राही प्यार के।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है कंटेम्प्रेरी है वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है ये जो दीवारें खड़ी करना है इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: महल हो

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतबद्ध गीत रवि द्वारा फिल्म एक महल हो सपनों का से आप सुन रहे थे और कार्यक्रम हम हिला ही प्यार के में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अगला गीत विदाई फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम विदाई।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सुनिए,
4: कहिए,
5: सुनिए एक खुशखबरी,
4: कहिए ना।
5: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
5: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
6: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
7: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
6: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
7: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
8: सखी सहेली।
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। जाने अनजाने इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, हंसरे जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं रखवाला फिल्म का, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और ये गीत है हम है राही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत

0: और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308871। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779815131607 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से

0: पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र

0: लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकस को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुने कार्यक्रम त्रिवेणी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना।

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

खेल हमारे नज़रिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: चिट्ठियां आती थी विविध भारती में,
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
1: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तुमका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो,

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम चित्रलोक लेकर, जहां आसमान पर बिखरी सूरज की सुनहरी रोशनी आज के दिन का मूड तय कर रही है और हवाओं में घुली ताजगी कह रही है चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है उन धुनों का जो कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचेगी, उन आवाजों का जिनमें आज के जमाने की चमक है और उन गीतों का जो शायद आज पहली बार सुनकर ही आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा शायद वो गाने बन जाए। कुछ धुनें कदमों में रफ्तार भरेंगी, कुछ चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और कुछ शायद इस खूबसूरत सुबह को आपकी और भी प्यारी खूबसूरत सी सुबह बना दे। तो आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, अपने मूड को म्यूजिक के हवाले कर दीजिए और तैयार हो जाइए कार्यक्रम चित्रलोक सुनने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में, मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग।

कार्यक्रम की पहली पेशकश आपने सुनी मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा भसीन की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल थे सोहेल सेन का संगीत। अगला गीत हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। रचना इरशाद कामिल की ही है, विशाल शेखर का संगीत है।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में कुमार के बोल। शारिब तोशी का संगीत।

0: कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज नियर रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर। फोन 8950632224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: श्रोताओं, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज है राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम जो आज मना रहे हैं, तो खेल की बात करें, खेल सिर्फ मैदान पर जीत हार का नाम नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी नाम है। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपनी शानदार हॉकी कला से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया और ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी खेल प्रतिभा और समर्पण आज भी देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। तो आइए आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलों को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, अनुशासन और देश के गौरव से जोड़कर देखें। खेलिए, आगे बढ़िए और भारत की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कीजिए।

0: चक दे इंडिया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों के स्वरों में। जयदीप साहनी के बोल थे, संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। प्रीतम के संगीत से सजा अमिताभ भट्टाचार्य

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। धूम 3 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में अगला गीत। कौसर मुनि ने इस गीत को लिखा है।

0: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
1: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
0: और ₹2,399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
1: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: ऐसा गांव है, इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
5: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
6: कुछ दिल ने कहा,
7: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
8: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
7: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
8: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
6: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
7: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
8: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
7: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
8: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
7: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
6: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
7: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
6: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
7: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

श्रोताओं, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि आज 29 अगस्त को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस दिन का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि दुनिया को परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाली मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना है।

परमाणु परीक्षण से रेडिएशन फैल सकता है, जिसका असर लंबे समय तक मनुष्य और प्रकृति पर रह सकता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोका जाए, देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं जहां परमाणु परीक्षण और उनसे होने वाले विनाश का खतरा ना हो। तो आइए आज इस दिवस पर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना और उसके लिए प्रयास करें जहां शक्ति का प्रदर्शन विनाश से नहीं बल्कि शांति, संवाद और मानवता से हो।

0: रश्मि विराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था आर्को ने। फिल्म का नाम था सुखी और आवाज थी सचेत टंडन की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चांद सिफारिश, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फना से। शान और कैलाश खैर की आवाजें थी, प्रसून जोशी का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत। ठिशकियाओं इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। सनमजीत तलवार ने इस गीत को लिखा है, पलाश मुश्चल की आवाज, माफ कीजिएगा, पलक मुश्चल की द्वारा संगीतबद्ध किया गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में रिश्कियाओं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पलाश मुच्छल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तेजस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में।

तेजस फिल्म से गीत सुन रहे थे आप श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज में। कुमार के बोल थे शाश्वत सचदेव का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यही समाप्त करने की दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
6: आज का अखबार।
0: आज का अखबार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर की ओर से सवेर वाली नमस्ते है जी। और सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज भी हम यही दुआ करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर तय करें। दोस्तों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 29 अगस्त को ये दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। उनकी खेल प्रतिभा के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने सन 1928, 1932 और सन 1936 की ओलंपिक गेम्स में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते। कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी से गेंद इस तरह चिपकी रहती थी कि सब उनकी कला को देखकर हैरान रह जाते थे। यहां तक कि हॉकी के इस जादूगर के जादू के सम्मोहन से हिटलर भी सम्मोहित हुआ और उन्हें जर्मनी की सेना में भर्ती होने का ऑफर भी दे दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया। एक इंटरव्यू में मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि जब वो जर्मनी और हॉलैंड में प्रैक्टिस करते थे तो वहां के फोटोग्राफर उनकी स्लो मोशन और फास्ट मोशन की फोटो लेते थे, फिर वहां के खिलाड़ियों को बड़ी स्क्रीन पर वो ड्रिवलिंग की उनकी टेक्निक सिखाते थे। आइए सुने मेजर ध्यानचंद की जुबानी।
7: हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिखलाने के लिए खींच लेते थे और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को, वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि

0: अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा डिबिलिंग करने लगे हैं। इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
1: दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद अनुशासन, समर्पण, मेहनत और देश के प्रति प्रेम उनकी शख्सियत की पहचान थे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हैं।

0: साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित

0: विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। दोस्तों, कहते हैं कि नेत्रदान महादान। नेत्र दान करके एक नहीं बल्कि 8 व्यक्तियों के अंधेरे जीवन को हम रोशन कर सकते हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेत्रदान के बारे में जागरूक किया जा सके और किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन किया जा सके। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कॉर्निया से जुड़ी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो चुके हैं और मृत्यु के बाद किया गया नेत्रदान ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए आंखों की रोशनी वापस पाने का माध्यम बन सकता है। नेत्रदान पखवाड़ा हमें इस महान संकल्प के लिए प्रेरित करता है। आप भी अपने जीवन में नेत्रदान का संकल्प ले सकते हैं। पीजे चंडीगढ़ में या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 या फिर अपने नज़दीकी आई बैंक में जाकर नेत्रदान करने का संकल्प ले सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को भी नेत्रदान के महत्व के बारे में बताएं। वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो हम सब जीते हैं, मज़ा उसी जिंदगी का है जो दूसरों के काम आए। और याद रखें, नेत्रदान महादान।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार और कार्यक्रम में बारी है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से चार दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अभी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है।

और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीसीए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार, और कार्यक्रम में अब बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि मामा तिहां सत्कार योजना के तहत पंजाब की लगभग 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम की दीवार 1.77 इंच झुकी होने के सोशल मीडिया पर चल रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया, कहा डैम पूरी तरह सुरक्षित है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी का अपने पद से इस्तीफा। हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का काउंटडाउन शुरू, बीच में पढ़ाई छोड़ी तो 10 लाख रुपए का बॉन्ड।

फंड भरना होगा। हरियाणा में बनेगा राज्य अल्पसंख्यक आयोग। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 20-21 साल से सेवाएं दे रहे लगभग 12,000 गेस्ट टीचरों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने मांगी रिपोर्ट। हिमाचल शिक्षा बोर्ड आगामी बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर कसेगा शिकंजा, लाइव सीसीटीवी से होगी निगरानी। चार सितंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रिसर्च और स्टार्टअप को देंगे नई उड़ान। चंडीगढ़ शहर की सेक्टर 39 मंडी में 23 साइटों की ई नीलामी, 122 करोड़ दाव पर फल सब्जी कारोबार के लिए एससीओ साइट नंबर 24 से 46 तक होंगे नीलाम, 1 सितंबर को होगी ई नीलामी। और सेक्टर 17 चंडीगढ़ प्लाजा फिर होगा गुलजार, एक साल से बंद लेजर शो फाउंटेन चलेगा, ब्रिज होगा रिपेयर, 14 लाख रुपए खर्च करेगा चंडीगढ़ नगर निगम। ये थी रीजनल और लोकल हेडलाइंस।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। FM 107

107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा के मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगुनविस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वो ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1924 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजना से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंकरोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: श्री राधाकृष्णन ने भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना भारत की खेल संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती खेल व्यवस्था हर स्तर पर प्रतिभागियों के पोषण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
2: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
4: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सफर सुरीला के तहत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मिस्टर आशिक फिल्म के गीत से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: दिल है तुम्हारा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत. आवाजें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की. शब्द रचना समीर की है, संगीत है नदीम श्रवण का.

0: इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपया तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो।
1: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राज 3 फिल्म का गीत। इसे गाया है केके ने, गीत को लिखा है संजय मासूम ने, संगीतकार हैं जीत गांगुली।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं तुम बिन फिल्म का गीत, आवाजें हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की। गीत को लिखा है फैज अनवर ने, संगीतकार हैं निखिल विनय।

0: लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पॉप टाइम।
5: पॉप टाइम। पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
6: हेलो मेरे सोने पाजी।
5: हेलो पिंके, आज फिर अकेले? शन्नो जी दिखाई नहीं दे रही।
6: लो कर लो बात, जब शन्नो जी आई नहीं तो दिखाई क्या देगी टी टी टी करके।
5: पर
6: नहीं लगे शन्नो जी को।
5: पिंके मेरा मतलब है शन्नो जी को आज फिर तुम नहीं लाए।
6: पाजी आपको याद है ना, 5-6 साल पहले हमने ब्याह शादियों की दुकान पाई थी टी टी टी करके।
5: हाँ हाँ पिंके बिल्कुल याद है, तुमने मैरिज ब्यूरो खोला था और खूब कमाई की थी तुम लोगों ने।
6: अच्छा पाजी, आज मुझे पता चला कि वो ब्याह शादियों की दुकान पिंके और शन्नो को बंद क्यों करनी पड़ी थी टीडी टी करके।
5: पिंके क्या हुआ था?
6: आपकी नजर जो लग गई थी टीडी टी करके। पिंके खूब कमाई की थी तुम लोगों ने ब्याह शादियों की दुकान से।
5: पिंके क्या कह रहे हो, मेरी नजर लग गई थी? सुधर जाओ सुधर।
6: पाजी अब मुझे बाद में सुधारना, पहले सुनाओ एक गाना, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टी टी टी करके।

0: अच्छा पिंके, एक बात बताओ।
1: मेरे सोने बाजी, आप डेट पूछो। आपकी मस्तानी आँख की सौ, दो बात बताऊंगा टीडी टी करके।
0: पिंके, शनु जी क्यों नहीं आई?
1: पाजी, हमने जो ब्याह शादियों की दुकान पाई थी ना 5-6 साल पहले।
0: हाँ पिंके,
1: जिसे आपकी नजर लग गई थी। वो ब्याह शादियों की दुकान हमने फिर से शुरू कर ली है टी डी टी करके, और सुनो जी वहीं बैठी हैं, मुर्गा ढूंढ रही हैं। आप जैसी थस्टी क्रो वाली एनके लगा के।
0: पिंके सुधर जाओ।
1: पाजी, कोई राज चलता आदमी हमारी ब्याह शादियों की दुकान के आगे निकला नहीं कि शन्नो जी हो जाती हैं शुरू। देखो जी, शादी टाइम पर हो जाए तो ठीक, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। पिंका एंड शन्नो, मैरिज ब्यूरो में आओ, शादी की टेंशन भूल जाओ टी डी टी करके।
0: अच्छा पिंके, फिर तो इस बार भी खूब कमाई हो रही होगी।
1: पाजी, हमें नजर ना लगाओ हमारी कमाई को, ये चंडीगढ़ शहर है, यहाँ पर नौकरी पेशा लोग रहते हैं, ज्यादा उधार बहुत करते हैं। आजकल तो हम शादियाँ भी फाइनेंस करते हैं 0% इंटरेस्ट पर टी डी टी करके।
0: क्या कहा पिंके, लोग शादियां भी फाइनेंस करवाते हैं?
1: हाँ जी भाजी, शादी के पंडाल से लेकर नकली रिश्तेदारों की बुकिंग हम करते हैं, और जितना भी खर्चा होता है हम फाइनेंस करते हैं यार। 5,000 रुपया एडवांस और बाकी आसान किस्तों पे टी डी टी।

0: ओहो पिंके, ये कौन आ गया?
1: पाजी, शादी की बुकिंग हुई नहीं और बारात से पैसे लूटने वाले पहले ही आ गए टीटी टी करके।
2: बेची पाजी
0: पिंके। पिंके, ये तो तुम्हारा दोस्त सोहन है। सोहन
1: सोन है के सोन जकाम। 12 महीने जकाम का सताया टीटी टी करके। ओए सोने, ओ आजा अंदर, खुला ही है मेची महल का दरवाजा टीटी टी करके।
2: नमस्ते मेची पाजी। हेलो पिक्के, एक तो इस जकाब ने मेरा डांस ही मार दिया है।
1: ओए होए सोन, हम बात कर रहे थे ब्याह शादियों की और तुमने अपने इस जकाम से हमारा ही नाश मार दिया टीटी टी करके।
2: बेची पाजी, किसी ब्याह शादी में जब बराती पगड़ा पाते थे ना, तो बै और पिक्का पैहे लूटते थे पैहे।
0: पिंके, सचमुच तुम बारात से पैसे लूटते थे?
1: ओए होए पाजी, हम कोई डाकू हैं जो बारात से पैसे लूटेंगे? ओए होए मेरे भोले पाजी, पहले दूल्हे के पिताश्री के पास लाल रंग की थैली होती थी जो 2 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों से भरी होती थी। बस जैसे ही वो ये पैसे मुट्ठी में भर के दूल्हे से वार के फेंकते, मैं और सोन टूट पड़ते उन पैसों पर। पाजी, मेरे हाथ तो आते 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के।
0: और पिंके, सोहन के हाथ?
1: भंगड़ा पाते बरातियों के पैरों के नीचे टीड़ी टी करके।
2: अरे मेरे हाथ, पिंके बचाओ।

0: सोहन, पिंके ने विवाह शादियों की दुकान, मेरा मतलब है मैरिज ब्यूरो खोला है।
1: अच्छा, मेरे यार पिंके ने विवाह शादियों की दुकान पाई है। एक तो इस जकाब ने मेरा दास ही मार दिया है।
2: ओए रब दा वास्ते ही सोहन, अपने जकाम से वहाँ हमारा नाश मारने ना आ जाना टीडी टी करके।
1: ओ यार पिक, तू तो यहाँ है और विवाह शादियों की दुकान पर फिर कौन है?
2: ओए सोन, तेरी भाभी शन्नो जी है और कौन है? ओए जकाम के स्ताए इंसान।
0: पिंके, अपने मैरिज ब्यूरो में, मेरा मतलब है विवाह शादियों की दुकान में, सोहन को भी पार्टनर बना लो।
2: हाँ जी बाजी, बरात में पैसे लूटने का ठेका सोहन को दे देता हूँ टीरी टी करके।

0: पिंके, तुमने भी कहा था ना कि सोहन को बारात में पैसे लूटने नहीं आते।
1: हजी बे छिपा जी, पर आप बारात में पैसे लूटते चगे नहीं लगोगे।
0: ओहो सोहन, मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा था।
2: बाजी, हमारा बारात में पैसे लूटने का 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स है। मैं और शिन्नो जी सिखा देंगे सोन जकाम को कि बारात में पैसे कैसे लूटने हैं, टीडी टी करके।
0: पर पिंके, तुम्हें भी तो बहुत देर हो गई बारात में पैसे लूटे हुए।
2: नहीं भाजी, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने 2000 रुपए के कूपन लूटे हैं एक बारात से।
1: एक तो इस जकाब ने मेरा दास ही मार दिया है। 2000 रुपए के कूपन, और यार पिक्के, चंडीगढ़ में लोग दूल्हे पे वार के कूपन लुटाते हैं।
0: पिंके, बारात में तुमने 2000 रुपए के कूपन लूटे?
2: हाँ जी मेची भाजी, आपको तो पता है चंडीगढ़ में नौकरी पेशा ज्यादा लोग हैं। ओए होए, जैसे ही दूल्हे के पिताश्री ने दूल्हे से वार के नीले पीले हरे कूपन लटाए, पहले तो मैंने सोचा 10-10, 20-20, 100-100, 500-500 के हरे पीले नीले नोट हैं, पर जैसे ही मेरे हाथ कूपन आए, किसी पर लिखा था 5 रुपए, किसी पे 10, और साथ में पता क्या लिखा था कि पहली तारीख को इस पते से आगे पैसे ले लें, उधार के लिए खेद है, टीडी टी करके।

नाचना है ना चाहो मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ, ये फिर ये अब ये कर

0: अच्छा मच्छी भाजी अब मैं चलूं, मेरे शन्नो जी के बगैर दिल उदास हो गया है टीड़ी टी करके।
1: पिंके जाओ।
0: अच्छा भाजी ओके बाय।
2: अच्छा बेची पाजी अब मैं भी चलता हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार सोहन। बाय पिंके। श्रोताओं आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पॉप टाइम।
3: अभी आपने पॉप टाइम कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 में।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर अगला प्रोग्राम लेकर आपके साथ होंगे कुछ ही पलों में।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे।
0: और साथियों, अब बारी है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस।
5: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: ये लाइव फरमाइशी कार्यक्रम है हमारा म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, और इस प्रोग्राम में आज आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। आज तो भाई अब से लेकर 12 बजे तक लगभग 1 घंटा आपके साथ रहेंगे और आपकी फरमाइश का जो सिलसिला है वो पूरा करेंगे, और इस प्रोग्राम में इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और फरमाइश पूरी हम सिलसिलेवार करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि जैसे ही हमने यहाँ से ये कहा कि आप अपनी फरमाइश पर गाना भेजें, अपनी फरमाइश भेजें, और तुरंत जैसे ही पहला हमें मैसेज मिला और हम उसे पकड़ लेते हैं, यानी आज की वो हमारी पहली फरमाइश बन जाती है। तो आज सबसे पहले श्रोताओं, अनिल पुंज का आपको बहुत बहुत नमस्कार है इस प्रोग्राम में। बहुत दिनों के बाद आज यानी शनिवार को आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और वो भी उस प्रोग्राम में जहां फरमाइश होती है आपकी, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको भी बड़ा प्यारा लगता है, हमें भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में इतनी प्यारी प्यारी सी फरमाइश आप भेजते हैं। अब देखिए, जो पहली आज की फरमाइश है वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना है। बहुत दिनों के बाद ये गाना सुनने को मिलेगा इस प्रोग्राम में। ये फिल्म है नैना, और इस गाने को सुनवाने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है, आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज। जो पहली फरमाइश थी वो थी सेक्टर 67 मोहाली से। तो चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आज के इस प्रोग्राम का पहला गाना नैना। ये फिल्म है

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नैना फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। ये थे आज के इस प्रोग्राम की पहली फरमाइश और हमने आपसे कहा कि सिलसिलेवार फरमाइश का सिलसिला हम चलाते हैं, उसे पूरा करते हैं और देखते हैं कि आज 12 बजे तक कितने गाने, 12 बजे से पहले पहले कितने गाने यानी कितनी फरमाइश शामिल होती है। तो अब अगली फरमाइश की बारी है। गोलमाल फिल्म का ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना है। इसे सुनवाने के लिए चंडीगढ़ से फरमाइश करते हैं बिमला अनेजा, सतीश अनेजा, आपकी फरमाइश पर ये गीत।

गोलमाल फिल्म से अभी आपने किशोर कुमार को सुना। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से, और हमारा चैनल है एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अगली फरमाइश की बारी आ चुकी है और ये फरमाइश है एक रिश्ता इस फिल्म से, और इसे सुनवाने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है छत्तीसगढ़ के भाटापारा के दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और साथ में हैं नोखेलाल वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में ये गाना।

अलका याग्निक कुमार सानू के बाजू में आपने एक रिश्ता फिल्म से ये गीत सुना और श्रोताओं हमें इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि देश भर से हमें फरमाइश जो है वो मिलती है, आप सबका फरमाइश के रूप में हमें प्यार मिलता रहता है। अब देखिए ये अभी गाना जो हमने प्ले किया वो छत्तीसगढ़ के भाटापारा से हमें मिला और अब जो अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं वो श्रीगंगानगर राजस्थान के पदमपुर से हमें मिली है और

ये फरमाइश करता है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आप सुनना चाहते हैं गीत फिल्म से गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, सुनिएगा।

0: गाना तो आपने कहा था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, लेकिन गाना आप सुन पाए मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ जो है इस फिल्म में, यानी दो बार ये गाना जो है शामिल होता है, और फिलहाल ये गाना आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। अब मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।
0: वेलकम बैक दोस्तों, म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस, ये लाइव

फरमाइशी कार्यक्रम होता है और इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी जो फरमाइश है हम वो पूरी करते हैं। 10 बजे आप ये फरमाइश भेजनी शुरू करते हैं और प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहले तक जो फरमाइश हमें मिलती हैं सिलसिलेवार वो फरमाइश हम पूरी करते हैं। और इसी कड़ी में अगला जो गाना है वो भी बड़ा प्यारा गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ में गाना है, मिली ये फिल्म है। इस गाने को सुनवाने के लिए सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहर खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने कहा है, आपने कहा है और हमने प्ले कर दिया है।

और दोस्तों, ये गीत था मिली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। ये गीत था फरमाइश का सिलसिला जारी है और बारी बारी से आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी फरमाइश। और दोस्तों, वैसे तो हमारे पास कई साधन हैं गाना सुनने के लिए आज के दौर में, लेकिन रेडियो की खासियत ये रहती है कि आपको ये मालूम नहीं होता कि अगला गाना कौन सा होगा। उन्हें तो मालूम है जिन्होंने फरमाइश भेजी है, लेकिन जब यहाँ से गाने चलते हैं आपको मालूम नहीं होता कि अगला गाना कौन सा होगा। बस यही जो खासियत है, सुनने वाले को बहुत अच्छी लगती है, हमारे श्रोताओं को अच्छी लगती है, और फिर ऊपर से हो आपकी फरमाइश तो सोने पे सुहागा। अब अगली फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये गाना है और इस गाने को सुनवाने के लिए जो हमें फरमाइश भेजी है, हमारे ये भी नियमित श्रोता हैं।

हमारे नियमित श्रोता हैं जो हमें सुनते हैं और फरमाइश करते हैं। ये हमारा गुलाटी परिवार है सेक्टर 9 पंचकुला से। आप हैं हमारे श्रोता रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, दीवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी और दीपांशु गुलाटी। साथ में हैं सिकंदर। और फरमाइश का गाना जो हम पूरा कर रहे हैं इन्हीं की फरमाइश पर, उसे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के साथ गीतकार आनंद बख्शी ने भी गाया है और ये फिल्म है चरस।

0: दोस्तों प्रोग्राम जारी है, फिलहाल यहाँ हम छोटा सा अंतराल लेंगे, बस अभी लौट रहे हैं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके

0: है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदो।
1: स्वागत है दोस्तों, प्रोग्राम लाइव फरमाइशी प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। आप ये कार्यक्रम आज सुन रहे हैं अपने साथ ही अनिल पुंज के साथ, और अब साथ हैं हमारे और भी मीठी मीठी प्यारी प्यारी फरमाइश आप सबकी। अगला गाना है उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ों में, राज ये फिल्म है, और इसे सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है पंचकुला सेक्टर 21 से मोहम्मद अनस और मोहम्मद अरहान ने। सुनिए अपनी फरमाइश पर अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में ये गाना।

राज फिल्म से गाना भी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाग्राम, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से, और अगली फरमाइश तैयार है दोस्तों। धर्म कर्म फिल्म से ये फरमाइश हमें मिली है और ये हमारे

बता हैं जिला हनुमानगढ़ राजस्थान नाईवाला से वेद मिडा और अलका मिडा। ये गाना है मुकेश किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में, तो सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: अभी आपने ये गीत सुना धर्म कर्म फिल्म से, और गाना दोस्तों बहुत लंबा गाना है, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जितनी हम फरमाइश पूरी कर सकें वो हम करें, और अगर गाने बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हम प्ले करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाकी फरमाइश जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो अब अगली फरमाइश की बारी आ चुकी है, और ये गाना है भ्रष्टाचार फिल्म से, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में गाना है। सुनवाने के लिए फरमाइश भेजी है मोहम्मद कादिर, मोहम्मद आतिफ, असलन बाबू, सेक्टर 25 पंचकुला से। तो आपकी फरमाइश पर ये रहा गाना।
1: तेरे नैना,
2: तेरे नैना, तेरे
1: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल को अभी आपने भ्रष्टाचार फिल्म से सुना। ये हमारे श्रोता हैं सेक्टर 23 चंडीगढ़ से, विकी, रेनू, बबलू, अक्षी। इन्होंने प्यासा फिल्म का गाना सुनवाने के लिए कहा है। गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत है और आपके रेडियो सेट पर सुनिए ये फरमाइश।

गीता दत्त की आवाज में अभी आपने प्यासा फिल्म से ये गीत सुना। अब कव्वाली हम प्ले कर रहे हैं और इसे सुनवाने के लिए हमें दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने कहा है, अपनी फरमाइश भेजी। और इनका गांव है पीपरलोड सरगांव है, छत्तीसगढ़ के ये रहने वाले हैं। और दी बर्निंग ट्रेन फिल्म की कव्वाली मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ों में आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
1: स्वागत है दोस्तों प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस में। इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी फरमाइश हम ये पूरी करते हैं। सप्ताह में 2 दिन ये प्रोग्राम होता है, शुक्रवार और शनिवार को। शुक्रवार को ये कार्यक्रम आप दिन में 11 बजकर

15 मिनट पर सुनते हैं, और शनिवार को ये जो प्रोग्राम होता है दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके रेडियो सेट पर। और इस प्रोग्राम के लिए फरमाइश जो आप हमें भेजते हैं वो सुबह 10 बजे से फरमाइश भेजते हैं। अब आज के इस प्रोग्राम की अगली फरमाइश की बारी आ चुकी है। मन की आंखें फिल्म का गाना है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है। इसको सुनवाने के लिए कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष, इनकी फरमाइश पर ये गीत हम शामिल कर रहे हैं मन की आंखें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना था मन की आंखें फिल्म से। और दोस्तों, प्रोग्राम अपनी मंजिल की ओर लगातार अग्रसर है और हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि भाई क्या सुनवाएं, क्या रहने दें। अब सुनवाना तो हमें सिलसिलेवार ही है और अगली फरमाइश भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना है। दोस्ती फिल्म है और इसके लिए पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया, गरिमा कनौजिया इन्होंने हमें श्री आनंदपुर साहिब से यह फरमाइश भेजी है। और एक हमारे श्रोता हैं असम से, इन्होंने केवल अपना नाम भेजा है और इनका नाम है हितेंद्र दास। हितेंद्र दास जी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। असम से आपने हमें अपने बारे में लिखकर भेजा है कि आप कोई किसी भी गाने में आप अपनी जो है अपने बारे में सुनना चाहते हैं, यानी अपना नाम सुनना चाहते हैं, तो वो हमने शामिल कर दिया। और अब बारी है दोस्ती फिल्म के गाने की, कनौजिया परिवार के लिए।

0: अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना, ये फिल्म थी दोस्ती। और एक हमारे दोस्त हैं दोस्तों, वो लिख रहे हैं कि कई हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं, आज तो गाना सुनवा दीजिए। आज भी आपका नंबर नहीं आ पाया क्योंकि प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन आपका नाम हम ज़रूर शामिल करते हैं। आप हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना से और गाँव हैं लमलेहड़ा। ये हैं नंद किशोर गर्ग कलावती और इनके बाकी परिवार के सदस्य। तो आपका नाम तो शामिल हो गया लेकिन फरमाइश आज भी शामिल हो नहीं पाई। तो दोस्तों, ये तो था आज का म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस प्रोग्राम। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: अभी आपने म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस ये प्रोग्राम सुना। ये लाइव फरमाइशी प्रोग्राम होता है FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। दोपहर के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल

0: संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में हम रिले करेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
4: साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत में संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला यादगार गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमानिगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

साथियों, आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
3: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
3: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
3: सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे, और इस गीत में आवाज़ें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे, और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बपी लहरी का, फन का नाम है चलते चलते।

0: अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहेगा शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00।

शाम 5:20 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे और शाम 5:30 सुहाना सफर प्रोग्राम आकाशवाणी के संग। सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने समाज सेवक श्री संदीप कुमार से। इनसे बातचीत की है हमारे साथ ही रमेश कपूर ने।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार और उसके बाद सुरसांझ

0: दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर प्रोग्राम होगा। 2 बजे प्रोग्राम त्रिवेणी आप सुनेंगे, 2:30 बजे सदाबहार नगमे और 3 बजे प्रोग्राम मन चाहे गीत। बाद दोपहर 3:30 बजे नाट्यतरंग प्रोग्राम में आज का नाटक है आई लव यू। टॉक शो पिटारा में 4:00 बजे बॉम्बे टॉकीज प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवा रही हैं गायिका दीपाली सहाय से। 7:00 बजे विशेष जयवाला प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए प्रस्तुत करेंगे क्रिकेटर धावटी। 8:00 बजे प्रोग्राम हवा महल में सुनी झलकी सुनो कहानी, कहानी है काबुली वाला भाग 2। 9:30 बजे आज के फनकार प्रोग्राम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री लीला चंद्रावरकर पर। दस बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम छाया गीत। 8:15 पर प्रोग्राम चित्र लोक मौजूद आपके लिए। 3 जानकारी हमारे आज के बाकी के कार्यक्रमों की, कुछ हमारे कुछ जो विविध भारती मुंबई से हम आपके लिए रिले करते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को है, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक

0: चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है, ताकि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में डॉ. मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देशभर में एक घंटा खेल के मैदान में कार्यक्रम जारी है।
1: मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा। नया भारत के निर्माण में देश के युवा फिट हो, सोसाइटी स्वस्थ हो, तभी समृद्ध राष्ट्र बनेंगे।
0: श्री मांडविया ने सभी लोगों से प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान पर बिताने और खुद को स्वस्थ रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ युवा और स्वस्थ समाज जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं स्थित गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब में मत्था टेका और गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु घर में सेवा और संगत का विशेष महत्व है। सेवा हमें विनम्रता, मानवता और परोपकार की भावना से जोड़ती है। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 के लिए 40 और वर्ष 2025 के लिए 38 शिक्षकों का शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया है। इनको यह पुरस्कार शिक्षक दिवस पर प्रदान किया जाएगा। राज्य पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक को नकद पुरस्कार के साथ शिक्षकों को आगामी पूरी सेवा अवधि के लिए महंगाई भत्ते सहित दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। जिन शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुना गया है उनमें अंबाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुड्डा कलां के प्रधानाचार्य सुभाष शर्मा, फरीदाबाद के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार और गुरुग्राम के श्याम कुमार शामिल हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नंगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हूँ तुम चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबरें सुनो। भारत के सब तो महान खिलाड़ियों एक मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन की याद में अज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत की अमीर खेल विरासत का जश्न मनाता है ते लोगों को खेलों को अपने रोजाना जीवन का नियमित हिस्सा बनाने लिए उत्साहित करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस ते देशवासियों को बधाई दी है। भारतीय हाकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि दृढ़ता, अनुशासन ते उत्तमता की भावना भारत के खेल सभ्याचार की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि देश की वादी खेल प्रणाली हर पद्धर से प्रतिभा पालन पोषण प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी विश्व पद्धर से शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम लगातार बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके

अभी आपने आराधना फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर थी कि संगीत था आरडी वर्मन का, सॉरी एसडी वर्मन का, और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की।

0: पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य। आज ही अपनाएं BSNL।
3: अगला गीत है फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल है आनंद बख्शी के।

सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका. जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा. 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स. 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन. आज ही खरीदे.
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
0: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे.
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी मार्ट चंडीगढ़. कॉल 9876277700.

0: Miles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Miles से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र।
2: बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है। बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे, लेकिन सवाल भी है इसमें। गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती है। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था। बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये, तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, सजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको पूछना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाए।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है, कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताजा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते, बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहां तितलियां बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हरदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, वही अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताजा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई। ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं

0: by MSME. Digital loan पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. Digital approval, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. Credit guarantee scheme के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू. 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी टिनका. जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा. 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम. 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स. 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी एक लकी ड्रॉ कूपन. आज ही खरीदो.
1: जवाब सही लिखा है. और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं. एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां, काले धुएं शोर के नीचे. मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं. खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है. सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से. आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार. आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है. फिल्म

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए, जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था इस गाने का जिक्र किया था वो गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए और जरा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही बूझा और लता मंगेशकर की आवाज थी। अक्सर आप मोहम्मद रफी की आवाज वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जय किशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने

साथ रस्से सुतली गोरी तुझसे पूछेगी ये मट्टी करके सांस सांस को भट्टी।

0: ממך, אף תרחק ממך.
1: תראה פה בסתר המדען, אור נא דרתי תרישן, תראה

0: جاگ ملخا جاگ ملخا جاگ ملخا اب تو بھاگ ملخا.
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है. विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं. लेकिन साथियों खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है. दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल. थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है. बच्चों के साथ बच्चा बनने से उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है. कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा.

हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। ये बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब

0: करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: बहुत धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@maa.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979-81-032-6117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86-18-51-42-84-905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। अपडेट रहे आगे रहे।

0: पर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
3: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
5: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान

मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।

0: मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
1: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे कि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।

राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूली बिसरी गीत।
1: मैं तेरा राग, तुम मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती।

0: कौन गिना
1: ये दिल का कमल सबसे सुंदर मेहनत का फल सबसे मीठा
0: सोई सोई सोई
1: इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता जो दिल हारा वो

0: था जिगर इतना था है दिल क्या बात बड़ी करने आए क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए।
1: आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

स्वस्थ मैं हूँ आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज फिल्म 14वें का चांद।

चौदहवीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे रमा ताई, डोंगर दिवे राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करते हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बी शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोरात रितेश आकाश रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। देवराय शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

खबर साजना मुरेकान का बाला और हम लगातार ढूंढ रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्र और लगातार कुछ कुछ नए नाम हमें मिलते जा रहे हैं लेकिन कुछ हमारे नियमित श्रोताओं के नाम भी शामिल हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई इस गाने के लिए, उनके नाम मैं पहले पढ़कर सुनाता हूँ आपको। मछली गोदाम रायगढ़ से ये पत्र मिला है इसी गाने की, इसके अलावा भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं। भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, लीलू और इनके अन्य मित्रगण। बरगी नगर जबलपुर से चिट्ठी आई है रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश और इनका पूरा परिवार। नरोत्तम गौड़ ने फरमाइश

चाहिए, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। और ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चोपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से। बहुत सारे नाम लिखे हैं, केसर बाई, हेमंत, योगेश और निजा, सुनीता, विनीता, अभय, अभिषेक, आयुष और इनका पूरा परिवार। और कुछ फरमाइशें और आई हैं। ये फरमाइशी पत्र आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्नी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रगण, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और दोस्तों हम पत्र वो शामिल करते हैं जिसमें बहुत सारे पत्रों में एक ही फिल्म के गाने लिखे होते हैं, लेकिन कई बार हम आपके फरमाइशी पत्र शामिल कर लेते हैं और एक कोई पत्र उठाते हैं जिससे आपको गाना सुनवाते हैं, मतलब एक पत्र में एक फिल्म का नाम लिखा है वो गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कुछ फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं ये फिल्म कन्यादान से।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज थी। जो सुनने के लिए पत्र होने वाले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव जत्तोरानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजे वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वच कामले, सुषमा वच कामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तुआ। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्ण नगर टीवी टावर से, और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर रमजान।

होता है नसीबा राशन सभी का देखो नहीं होता है नसीबा राशन हो जाए।

0: किसको महता कर दिखलाए बंजारा धाम जीवन के गीत सुनाए।
1: जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में, शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था हीरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहर गज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेंद्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से, और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पे, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: और क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: देखो तो, देखो तो।
2: क्या देखो, क्या देखूं? तुमने देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: क्या मेरी कमीज मैं चाहे जैसा पहनू?
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू है? है
3: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं।
3: क्या मिल गया?
2: ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
3: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे?
2: और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब? चलो चलो अपनी ला लो, रसोई में जाओ।
3: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है।
2: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है अकल?
3: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
2: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
3: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।

0: कहा बर्तन कौन? तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
1: चाचा मर गए। चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी
0: अचानक तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह से गला पड़ रहे हो?
1: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना। अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
0: अरे वो नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
1: खाना खाना नहीं भूली। अरे रामू का तो बहाना है।
0: अब करना क्या है वो बोलो।
1: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
0: चाचा जी तुम ही मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
1: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
0: जी गलती हो गई। बस
1: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
0: तो गलती सुधार लो।
1: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
0: बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया। अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस
1: साफ सफाई कौन करे? मैं करूं?
0: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
1: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
0: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
1: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
0: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा?
1: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति
0: नहीं वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे।
1: एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला।
0: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है मेरे नहीं।
1: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
0: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
1: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
0: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
1: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते हुए तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
0: कहाँ जा रहे हो?
1: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट पेपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
0: अरे मेरी चप्पल उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी। कैसे हम रोटी खा रही है?
1: अब रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
0: तुम्हारे ही दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
1: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
0: चप्पल टूट गई है।
1: टूट गई? किससे तोड़ी?
0: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
1: अच्छा भाई, टूटी ही सही, मगर वो है कहाँ?
0: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं कि पूजा के लिए ले जाएगा।
1: अरे भाई चप्पल तो मिल नहीं रही है। चलो जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ। मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ?
0: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो वरना।
1: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
0: कल रात तुम ही मेरे वहाँ बताने थे।
1: इसके फीते कहाँ गए भाई?
0: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
1: निकल तो थे ना।
0: चूहा ले गया होगा।
1: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
0: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता?
1: हमारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम भी इतना खुश हो जा रहे हो तुम?
0: यानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना?
1: अब तुमने मुझे दीवाना कहा है?
0: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है।
1: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
0: हाँ चाचा कल मामा परसों बोसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
1: मैं कहता हूँ चुप बैठो नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
0: जाओ बाजार से खरीद।

0: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
1: नंगे पाँव जाओ, बढ़िया क्या करो, फीता लगोगे।
0: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
1: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
0: तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा, बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
1: लेकिन रामो नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
0: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पक पक है।
1: अच्छा, तो क्या मैं बक बक करती रहती हूँ?
0: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
1: अरे शादी के पहले तो कहते थे। रेखा तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
0: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
1: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
0: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम तारका हो, तारका।
1: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
0: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। मर गया मर गया, चाची आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर दरवाजा खोलो।
1: देखो मेरे कपड़े से ठीक है ना?
0: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी है और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है। वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिथड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
1: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
0: मैं जा रहा हूँ।
2: मौसी मौसी मौसी, कहाँ हो तुम?
0: मैंने भाई मैं हूँ, मैं हूँ।
2: मौसी क्या? थैंक गॉड, मुझे लगा कोई मोहन ही पीछे पड़ा है।
0: भाई ये तो बताओ, ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
2: महाजी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
0: वो क्यों?
2: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
0: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है।
2: मौसी कहाँ है?
0: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
2: आज से क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
0: आखिर तुम्हारी शादी तय हुई है और इतनी जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
2: मौसी कहाँ है बताइए ना।
0: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
2: मौसा जी, ये आप क्या अनाप शनप पकड़े हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
0: ओ हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
2: मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
0: देन यू शुड नॉट मैरी बिकॉज मैरिज इज ए बिगेस्ट जोक।
2: प्लीज मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
0: घर में झगड़ा कर आई हो?
2: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
0: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
2: मैं क्या सबके सब झगड़ा करती रहती हूँ, आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
0: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
2: इनफ, बहुत सुन लिया आपका मैंने।
0: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
2: घर मेरी मौसी का है
0: और तुम्हारी मौसी मेरी है,
2: ऐसा आप समझते हैं?
0: क्या मतलब?
2: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई ताजी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
0: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना मुझे नहीं समझ में आया।
2: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
0: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
2: मौसा जी,
0: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
2: नहीं।
0: कब तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे फिरते थे।
2: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
0: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
2: हाँ लेकिन ये बात एक मर्द का समझते हैं, इन्हें क्या?
0: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
2: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
0: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
2: आप मुझे बताइए, मौसी बढ़ गई है क्या?
0: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
2: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
0: लेकिन तुमने मौसी से क्या कहना है?
2: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ

0: तुमने अपने डैडी से बात की?
1: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को?
2: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
1: आप मुझे पता ही है, मौसी बढ़ गई है क्या?
0: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
1: तू इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
0: लेकिन तुमने मौसी से क्या काम है?
1: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
0: किसके बारे में?
1: मैं अपनी मम्मी तोड़ना चाहती हूँ।
0: क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
1: प्यार? माय फुट? नो, आई कांट लव एनीबडी।
0: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
1: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में कामों वाली ही समझते हो ना? सभी मर्द अहंकारी होते, ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह। क्या हुआ? इस तरह क्यों दहाड़ रही हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? क्या हुआ?
0: अरे इस लीला पर माता जी आई है।
1: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रही हो?
0: इस पर पिताजी आए हैं।
1: तुम कब आई लीला? अब भी थोड़ी देर पहले। मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीला, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है। ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस। क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना?
3: वीरेंद्र वीरेन वीरेन वीरेन वीरेन,
1: क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
3: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
1: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
3: पति? गधा है गधा।
0: मालूम होता है लात खाकर आई है।
1: तुम बीच में ना बोलो जी।
0: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना? अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पली पहन कर चला जाता हूँ।
1: अरे ये क्या पागलपन है,
0: थोड़ी छोटी होती है बस।
3: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
0: गुलाब जामुन रस मलाई
3: मुझे नहीं खानी।
1: इनके चाचा जी बता रही हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
0: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बात तो चाचा जी हैं।
1: ओहो, चाचा जी आ रही हैं, तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रही हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
0: लीना लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई और अहमदाबाद में, उनकी चार चार मिले हैं। चार चार?
1: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
0: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है, जानती हो लीना? मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
1: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
0: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
1: तो कोई नई बात नहीं है, लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं, एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
3: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
0: नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो जाओ ना।
1: तो बोल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
3: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
0: ओ, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी हो। मैं बोल देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
4: थैंक गॉड लीना तुम यहाँ हो।
3: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
4: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, थक गया हूँ, आके सोचा तुम यही होगी।
3: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए, मेरी जासूसी कर रहे हो? शाम नहीं आती पेशाना हूँ। तुम होश में तो हो, ये क्या बोल रही हो? गेट आउट, आई से गेट आउट।
4: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
3: ये लोग कोई पराया नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
0: चलो ये वीरेंद्र के जूते हिलाली लेता हूँ।
1: क्या कर रही हो?
0: ये बूट
4: ये बूट तो मेरे हैं।

0: मुझे मालूम है, यही जरा ट्राई कर रहा था।
1: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप।
2: मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
1: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसम मौसी है।
2: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
1: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। लीना वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है, यूं अचानक तुम दोनों?
2: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
1: बस यही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
2: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगे ना? ए, चुप क्यों है?
1: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
2: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
1: क्या बोलो?
2: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: ये क्या कर रही हो? हम बाग में बैठे हैं।
2: क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है?
1: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
3: ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
2: लो,
3: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
2: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो लो। मैं
2: इसीलिए मैं यहाँ से मना कर रहा था, देखो यही बैठ गया।
1: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
2: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
1: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
2: अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
3: हाँ
2: तुम जरा उस तरह बैठो ना।
3: हाँ क्यों?
2: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
3: कितने का दूं बाबू जी?
2: कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
3: वहां बैठने का 10 रुपया?
2: हाँ हाँ,
3: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।

0: कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
1: क्या है?
0: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
0: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
0: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
1: मगर आप हैं कौन?
0: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
1: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
0: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
2: आप क्या चाहते हैं?
0: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किन मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उससे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यार।

0: आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है,
1: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
1: एक आइडिया, बस आप यूं दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रुक जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
1: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है। सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: Really?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो भी नहीं सकता, हम दोनों को नादान थोड़ी है। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है। That's why I love you, darling. तुम भी कहो ना I love you. अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी नहीं चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना?
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना I love you, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are mature.
2: Okay. ये तो बस मेरे मन की शांति के लिए।
1: Please, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: लेकिन शादी के पहले इसे बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: ना।
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही है या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सब इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑल राइट, लेट इट कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझ रहे हो? I hate you.
2: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी याद लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
2: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब ला, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना, लीना ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
2: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
2: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
2: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
2: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल, तुम्हारे ही रिश्तेदार है।
5: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
4: फोन करके देखो चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। वो नंबर है तुम्हारे पास?
5: मेरे पास कहाँ खुशी होगा।
4: अब कहाँ जा रही हो भाई?
5: देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
4: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
5: क्या तुम भी

रही, मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र उपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेघा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी

0: ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, और उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: बोलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाली उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर।

0: from the talkies.
1: Lights,
2: sound,
1: camera, action.
3: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूँ और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।
4: जैस

0: क्या बात है, क्या बात है। अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई है। दीपाली साहब बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर।
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है। और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो, रेडियो, क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो अब ज्वाइंट फैमिली है, 30 लोगों की का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने, और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और

0: आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
1: क्या बात है।
0: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है। टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है पर गा रही थी दीपाली और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
0: जी आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, बहुत कुछ याद रहता है। बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके हे मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसे आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही। तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है। तो वो हमको वो मंजर याद है, ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है। क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान भी मिला है। मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए। ये मेरी लाइफ का आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था। बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, पुलिस वाले लोग थे और बाइक वाइक चलाने भी सीख लिया।
0: जी बिल्कुल, आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
1: 6th क्लास
0: नहीं पहुंचते थे तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दिपाली भागेगी चाबी चुरा के,
1: एक्सीडेंट का डर।
0: हाँ तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकने ही नहीं आता है। रुके कैसे, चलाना तो आता है रुके कैसे। फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे ये छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, इसको आप क्यों नहीं समझाती है। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम 6th में ही, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे। पता नहीं क्यों था,
1: गाड़ी मतलब
0: 4-व्हीलर
1: प्रॉपर वो लाल बत्ती वाली।
0: नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे। तो हम थोड़ी जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा और बहुत, फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए
1: तो, पैर पहुंचने,
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया,

0: जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो. उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर. तो भाई सिक्स से लेके एट नाइन्थ तक, मतलब ट्वेल्थ तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी. और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगी तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चलाना शुरू कर दिए थे, गाड़ी सिखा. बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए. उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बने कि नहीं बने, आ गया तो चलाने दो. लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है. तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए. लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी.
1: क्या बात है, मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे. मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
1: एजुकेशन
0: पे फोकस है. और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं. आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था. अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में. बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाई कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम. तो पढ़ाई ही इकलौता था, अभी काफी चीजें चेंज हो गई हैं. तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये जरूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी. तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे. ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट. और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर हो
1: तो. क्या बात है. अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही हैं, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था. क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके. तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक. एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स. क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है. जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है. तो किसी तरह से आई थिंक, और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे. पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ. बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है. मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे.
1: मतलब इतनी
0: काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे. और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है एनआईटी का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमाते आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है. क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे आईआईटी का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामिल होती है तो नशा होता है संगीत का वहां.
0: करेक्ट. तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था. सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर. और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने

0: वाला प्ले होता है और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी. सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स, और तब जो आज मेरे दोस्त हैं तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्य और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो. आज आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले. तो इट वाज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया.
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था. और पता नहीं हमको बचपन से हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा. तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. तो जब जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे.
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ एक गाने की जगह बनती है क्योंकि हाँ. इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद है.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे.
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: सुंदर सपनों की है

0: अच्छा यूनिटी के एक तरफ से नीच चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, उन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा जमाना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, जो CSR हर बच्चे ने पढ़ी होगी, UPSC की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम 7th-8th में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था RJ। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताया आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुके, खूबसूरत आवाज है आपकी, तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती है, एंड आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएगी, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है। बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वाज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहां पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वाज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है स्टेज पे जाना है गाना गाने में, ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो, ठीक है चलो माफ किया, छोड़ दिया। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम मत करो, तो बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे, हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं। मेरे माँ बाप 12th के एग्जाम के दौरान,
0: वेरी गुड,
1: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भागते गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा, यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
0: बीच में गैप्स होते हैं,
1: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहां भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और वहां पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुंचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
0: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
1: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं, और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई

0: फेस वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था। हम कभी टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, तो बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल्दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में यह था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अंग्रेजी इसको कैसे आती है। और रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए, वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था। तो लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं, हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सीन नहीं होगा मेरा, बिहारी हो लगती नहीं हो।
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं।
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला,
0: इतना बड़ा, और वो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण
0: नहीं होता है, करेक्ट,
1: बाकी तमाम चीजें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरी पर्सनालिटी की जहां तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना, व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। आप जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
0: तो
1: बहुत बड़ी बात है
0: जी। तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको, आउट हो चुकी है।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने। हाँ। और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट।
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात नहीं करता है। कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे ना, मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और हम करके बात करते हैं तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना, तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई, हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। I come from a convent school. I have that. I also talk in English and do my morning prayer. वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे

0: एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती,
1: ये भी मान चुके,
0: ये भी माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा, इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टूट गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है तो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहां से लाओगी जेवर। हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे, वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
0: बताइए बेटी
1: बेचारा। बिल्कुल, ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: इतना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से भी इसका अर्थ भी बता।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिकारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दिया,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, कहानी भी
0: यही है, वो फिल्म की हम बात करें
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है
1: ये, हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: एंड वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी। बिल्कुल,
1: और ये बहुत पेनफुल है। जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी,
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है।
1: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किया ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना, वो है जीवन।
0: हाँ।
1: जीवन वो है, ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्प भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
1: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज
0: ताकत पूरी लगाई थी, परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया,
1: और वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम, रोना सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी वो बहुत कड़क थी, कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
0: हाँ।
1: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
0: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
1: तो तूफान,
0: ऊपर सब कुछ स्थिर है,
1: ऊपर ऐसा दिखा रही जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर

0: दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था, लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ, तो लगा था हैप्पी के मन रखने के लिए तो
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा, एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने।
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके। और तब हमको लगा था ठीक है अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। वो मेरा मन रख रही है, हम भी छोटे थे 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फाइनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद
0: हाँ
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
1: अच्छा, पहले ये
0: पहले था हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां, अब तो नहीं है स्टूडियो नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, आपने कभी देखा एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या, धरा ही क्या है, ये स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब अकेले कमरे में
0: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती है, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय, तो मेरी दोस्त नहीं थे बचपन में। तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजे का तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेगी या माँ मिलेगी घर पे, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे कि बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं, सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 2 days ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना
0: उनके गोद में महीनों रोना, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा करेगी,
1: अब बीच में तो भंवर है कि अब क्या करें,
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है, तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ

0: तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां पे इतना महंगा है, रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना जावेद अख्तर तुम्हारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, एक साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल के बाद, जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसी

0: पूरा जीवन धनी लोगों को बनाने में लगा दिए हैं। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माई गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वॉज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वॉज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है, सब मुड़ के देखते हैं ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है,
0: वो पर्दे के पीछे है। जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लन चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं।
1: और वो उजल है,
0: वो उजल है, वो कहीं भी नहीं है, बट ये सपोर्ट होता है। वो उजल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये बहुत प्यारी बात है और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान, सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं, 2-3 साल के अंतर पर।
1: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन है।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वही होती थी और स्माइल के साथ वही रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त के बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती है जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, जब हम आए एग्जिस्टेंस में, तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी, तो बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा, हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम उनको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया, यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर हम बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं।

0: आंसुओं में, हमारे हमारी उन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉक के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी अगले हफ्ते भी, जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अपना बॉम्बे टॉक।

एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर झपारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत की विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास और कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया, क्योंकि 4 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बाढ़ के बाद भारत सरकार की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषयों से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने

0: 28 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। लाखों राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों ने महंगाई भत्ता जारी करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और सेवा से संबंधित कई अन्य लंबित मांगों को लेकर महाहड़ताल की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी के श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: गर्ल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और बाइल से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पेश है गीत फिल्म शहीद से और इस गीत को आवाज अदा की है उदित नारायण और भूपिंदर सिंह ने।
4: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बस

अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है. That means they are interchangeably used. ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है. यह एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना. अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है. सुसंगति सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है. सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं. टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति सुकून जैसे शब्द. टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि. कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग. अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है. मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है. व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी, दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी, मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है. एकांत में साधना उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता. इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा. मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है. धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम

उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा के। परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि काफी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए। किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाए। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता आजीवन में सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एनकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आपने सुना स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब पेश है प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, अपने लिए तो हम सब जीते हैं, मजा उसी जिंदगी का है जो दूसरों के भी काम आए। आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने सपनों की परवाह ना करते हुए अनाथ, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। उनके लिए आशा की किरण बने रद्दी से शिक्षा जैसा इन्होंने अभियान चलाया ताकि कोई भी बच्चा

0: शिक्षा से वंचित ना रहे। हम बात कर रहे हैं समाज सेवक द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार जी की। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जन्म आपका कहाँ पे हुआ और आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ पे हुई?
1: मेरा जन्म हरियाणा के भिवानी जिले की तहसील तोसाम में, गांव ढाणीमऊ में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई। उसके बाद मेरी उच्च शिक्षा चंडीगढ़ से हुई और मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, मैंने गांव से ही अपनी शिक्षा पूरी की है।
0: जी, क्योंकि आप एक समाज सेवक हैं तो समाज सेवा का ये जो सफर है आपका, वो कब शुरू हुआ, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सामाजिक क्षेत्र में आऊंगा। तो 2016 में मैंने कोर्स किया JBT, जो प्राइमरी टीचर का कोर्स होता है, और कोर्स होने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग है इंटर्नशिप हरियाणा के एक गांव डाडम में लगी। तो जब मैं डाडम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वहां जाके मैंने देखा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे रोज स्कूल आ रहे हैं। मैंने उनको काम दिया क्योंकि मेरे अंदर जोश था, मुझे लगता था कि मैं बच्चों को कुछ ज्यादा अच्छा ही पढ़ाऊंगा। तो मैं ये हर रोज ये देखने लगा कि मैं बच्चों को काम देता लेकिन बच्चे अपने काम करके लेके नहीं आते या बीच में छुट्टियां मारते, तो ये हर रोज का काम होने लगा। तो जब मैंने बच्चों से पूछा भाई आप इतनी छुट्टियां क्यों मारते हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि मेरे पास नोटबुक नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगा कि दो चार बच्चों ने नोटबुक मांगी और मैंने मार्केट में गया और मैंने दो चार बच्चों को नोटबुक खरीद के दी। अगले दो चार दिन में फिर क्या कि सारी क्लास मेरे पास आने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैलने लगी कि एक टीचर है वो नोटबुक पेन पेंसिल देते हैं। तो सारे 8वीं तक का स्कूल था वो, तो बच्चे मेरे पास आने लगे। मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अब इतने बच्चों को तो मैं दे नहीं सकता, अब ये सारे बच्चे मेरे से ही नोटबुक क्यों ले रहे हैं, जबकि सर्व शिक्षा अभियान में 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, सरकार सारी फैसिलिटी देती है। तो मैं अपने हेड सर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर आप इन बच्चों को नोटबुक नहीं देते हैं, सरकार तो देती है। तो उन्होंने कहा भाई ये हमारे पास नहीं आते हैं नोटबुक, इनकी नोटबुक का ये स्टेशनरी का जो पैसा है इनके पेरेंट्स के खाते में जाता है और वो उनको दिलाते नहीं है। तो फिर मैं उन बच्चों के पेरेंट्स के घर गया और जाके मैंने देखा कि पेरेंट्स से बात करूं कि बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, आगे तभी बढ़ेंगे ना जब इन बच्चों को ये सामान मिलेगा। तो जब मैं उनके फैमिली के पास गया तो मैंने देखा कि मेरे से ये सवाल हुआ ही नहीं वहां जाके, क्योंकि जब उनके घर के हालत देखे तो मैंने देखा कि जिस घर में खाने के दो वक्त का खाना नहीं है तो वो पेरेंट्स शिक्षा का सामान कैसे दिला सकते हैं। अगर सरकार ने 1000 रुपए उनके खाते में डाले हैं तो पहले तो वो राशन खरीदेंगे फिर वो एजुकेशन के बारे में सोचेंगे।
0: जी,
1: तो फिर मैं वापिस आया और फिर यही बात मेरे अंदर से जहन में आई कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गैप है। तो ये एक सामाजिक सेवा में जाने का ये एक मेरा फर्स्ट काम था कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुकी थी तो मैं वापिस चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ आके मेरे दिमाग में वही सवाल चला, क्या जो बच्चे गांव में थे ऐसे बच्चे यहाँ पे भी हैं?
0: जी,
1: फिर मैंने पूरे चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला ट्राई सिटी है, तो इन तीन शहरों में मैं घूमा और मैंने देखा कि यहाँ के हालत वहाँ से ज्यादा बदतर है। तो मैंने जब ये पता किया कि यहाँ पे भी जरूरत है तो मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैं इस चीज के ऊपर काम करना चाहता हूँ, जबकि उनका विरोध हुआ इस बात को लेके। लेकिन मुझे लगा कि इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे बच्चों के लिए जो सामान आएगा ये आएगा कहाँ से, तो ये एक बड़ा सवाल था क्योंकि इनमें तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊंगा जबकि मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि ये काम नहीं करना, आप पढ़े हो लिखे हो, अपना भविष्य के बारे में सोचो, आप कहाँ इन चीजों में फंस रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपने जीवन में ही करना है।
0: जी, अगर ओपन आईज फाउंडेशन की बात करें तो किस तरह से शुरुआत हुई, आइडिया कहाँ से आया?
1: यही जैसे मेरे मन में एक ख्याल तो आया कि मैंने इसके ऊपर काम करना है, फैमिली वालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैंने मोटिवेशनल चीजें सुननी शुरू की। तो वहां से मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने कहा कि जो समस्या है उस समस्या को लिखो और फिर ये देखो कि मुझे इसका समाधान चाहिए। तो मैंने इस समस्या को लिखा कि शिक्षा का बेसिक रिसोर्स नहीं है, मुझे इसका समाधान चाहिए। तो जब मैंने इसको लिखा मैंने 20-25 डायरियां भरी है, फिर एक दिन अचानक से मेरा पेन खत्म हो जाता है, फिर मैं अपने घर वालों को कहता हूँ मुझे पेन चाहिए, घर वाले कहते हैं आप तो पागल हो चुके हो, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हो। तो मैंने हर बार आदमी पुरानी चीजें देखी, पुरानी चीजों में मुझे एक पेन मिलता है उसमें रिफिल नहीं होती है, तो मैं उस पेन को खोलता हूँ उसकी रिफिल देखता हूँ। उसी क्षण मेरे दिमाग में ख्याल आता है ये जो पेन है ये मार्केट से मैं 10 रुपए का लेके आया हूँ और इसमें खत्म हुई है सिर्फ 1.5 या 2 रुपए की रिफिल, अगर ये 1.5 या 2 रुपए की रिफिल इसमें डाल दी जाओ तो 10 रुपए का पेन तैयार हो जाता है। तो एक ख्याल आया, फिर ऐसे ही किताबों का ख्याल आया, ऐसे ही स्टेशनरी का ख्याल आया। तो वहां से लगा कि मेरे घर की जो रद्दी है इसको मैं शिक्षा का जरिया बनाऊंगा और वहां से पढ़ा कि ओपन आईज फाउंडेशन बना के इस फील्ड में काम करना

0: जी संदीप जी, क्योंकि जब हम लीक से हटकर कोई काम करते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ?
1: देखो, देश दुनिया में जितनी भी चुनौतियां होती है आदमी पार कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती घर वाले होते हैं। तो मेरे इस काम में मेरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मेरे घर वाले थे। उन्होंने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया जब मैंने काम शुरू किया, और मुझे 5 महीने बाद अपना घर छोड़ना पड़ा, और मैं 5 साल तक अपने घर नहीं गया, क्योंकि यही मानना था कि हमें अपने जीवन के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, इस तरह का जीवन जीना चाहिए, यह घर का स्ट्रगल। उसके बाद क्या है कि जब आप समाज में जाते हो तो आपके दोस्त मिलते हैं, आपके रिश्तेदार मिलते हैं, और काम मैंने ऐसा चुना कि मैं पुरानी किताबों को इकट्ठा करूंगा, स्टेशनरी के सामान को इकट्ठा करूंगा, यानी मैं रद्दी का काम शुरू करूंगा। तो मैं जब भी ये काम करने जाता तो कभी कोई जानकार मिलता, कभी कोई मिलता, तो सब यही कहते कि आपका जो बच्चा है घर वालों को भी, ये तो रद्दी वाला है, रद्दी वाला काम शुरू किया है। तो समस्याएं तो हर पल पे खड़ी हैं। आप 22-23 साल के हैं, आपको कोई रद्दी वाला कह रहा है, जबकि आपके अंदर एक जुनून है कि उन सारी किताबों को इकट्ठा करके उन बच्चों को देना है। दूसरा आपका संघर्ष है, आपने घर छोड़ दिया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? तो उसके लिए फिर पार्ट टाइम जॉब शुरू की, ताकि जॉब भी शुरू की जा सके और जो है लोगों की सेवा भी की जा सके।
0: जी, तो आपने जो रद्दी से शिक्षा अभियान शुरू किया, इसका आइडिया आपको कहां से आया और किस तरह से इस अभियान की आपने शुरुआत की?
1: रद्दी शिक्षा आइडिया वही आया कि जब मेरा पेन खत्म हुआ और मैंने दोबारा जब रिफिल डालनी शुरू की, उसी तरीके से जब नोटबुक के मैंने देखा कि खाली के 4-5 पेज खाली हैं नोटबुक के, तो खाली पेज निकाल के नई नोटबुक बनाई, फिर सोचा कि मेरी किताब है, उसको मैं दूसरे बच्चों तक भी तो पहुंचा सकता हूं। तो फिर मुझे लगा मेरे घर में तो रद्दी थी
0: जी,
1: साइड में रखी थी, रद्दी थी, आज नहीं तो 2 दिन बाद ये बिकती, लेकिन मैंने इसको शिक्षा का जरिया बनाया, तो आइडिया यहां से आया, रद्दी से शिक्षा।
0: जी संदीप जी, आपको कब महसूस हुआ कि आपका ये जो अभियान है रद्दी से शिक्षा वो सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है?
1: पहले मैं पैदल पैदल किताबें इकट्ठी करता था, एक दो कोई साथ जुड़ जाता था तो कोई किसी दोस्त की एक्टिवा ले ली, किसी की साइकिल ले ली, तो उससे मैंने किताबें इकट्ठी करी। उसके बाद मैंने 12,000 रुपए का सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, और उससे जब मैंने लोगों के घरों से किताबें इकट्ठी करनी शुरू की, तो 6-8 महीने के बाद लगभग 2018 में एक बड़े अखबार में मेरा प्रकाशित हुई, तो उसके बाद इंग्लिश अखबार था, तो लोगों ने मुझे बहुत फोन कॉल्स करने शुरू किए। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट को शेयर किया, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ भाई, जब आपको कोई नहीं जानता, आपके घर वाले भी नहीं जानते, और आपको एक मुख्यमंत्री है वो आपकी पोस्ट को शेयर कर रहा है, आपकी पहुंच नहीं है वहाँ तक, इसका मतलब है लोग आप पे विश्वास करने लगे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए।
0: क्योंकि आप द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इस नाम की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपको ये नाम मिला?
1: द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ का टाइटल इसलिए पड़ा कि जब मैंने अपने स्कूटर से मैंने किताबें इकट्ठी करनी शुरू की, तो वो जो फोटो है बड़ी वायरल हुई, तो वायरल ऐसे हुई कि हर अखबार ने उसको कवर किया, तो उसके बाद जो टाइटल है द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ वहां से पड़ा। लेकिन जब आप किताबें इकट्ठी करते हैं तो आप लोगों के घरों में जाते हैं तो तमाम तरह के लोग आपको देखते हैं, फिर जब आप सुर्खियों में आ जाते हैं तो न्यूज़पेपर वाले आपको कवर करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान उन्होंने इस नाम का यूज किया कि किताबें इकट्ठी करते हैं तो उनको द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ का टाइटल दिया जाए। तो धीरे धीरे वो हर रोज जब भी अखबार आता तो उसमें वो टाइटल लिखा होता कि द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ लोगों के घरों में जाते हैं, पुरानी किताबें इकट्ठी करते हैं और बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो इस तरीके से ये चीज चली।
0: अगर किताबों की बात करें तो अब तक कितने बच्चों को आप कितनी किताबें बांट चुके हैं?
1: अब तक हम लगभग 3 लाख से ज्यादा किताबें हम बांट चुके हैं, लगभग हम 4-4.5 लाख किताबें इकट्ठी की हैं हमने, उनमें से 3 लाख किताबें हम लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चों को बांट चुके हैं।
0: संदीप जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत की बात है तो जिंदगी कुछ तो बता, ये मैं सुनना चाहूंगा और अपने श्रोताओं को भी सुनाना चाहूंगा।
0: जी, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं समाज सेवक द बुकमैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार। संदीप जी, आपने लीक से हटकर बहुत सी नई चीजें की। लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी या ईमानदारी की लाइब्रेरी क्या है और किस तरह से आपने इसे शुरू किया?
1: लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी के नाम में ही इसकी खूबसूरती है, ऑनेस्टी। यानी जब लोग हमें किताबें डोनेट करते हैं तो वो हम पे विश्वास करते हैं, हम पे बिलीव करते हैं कि हम वो किताबें हैं जो उन बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना, बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन की किताबें होती हैं जो जरूरतमंद बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको, और बच्चे की नॉलेज से बड़ी किताबें वो होती हैं। तो हमने वॉकिंग डिस्टेंस पे, जैसे आप चंडीगढ़ में जाएंगे सेक्टर 34 में जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगे सेक्टर 15 में जाएंगे, पंचकुला में जाएंगे, तो हमने छोटी छोटी मिनी लाइब्रेरी बनाई है जिसमें 80 से 100 किताबें होती हैं। आप वॉक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अचानक आपकी नजर एक लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी पे पड़ी, आप देख रहे हैं इसमें कोई लोग भी नहीं है, और वहां से ये लिखा हुआ है कि आप अपनी कोई भी मनपसंद किताब उठाएं और घर ले जाएं, पढ़ने के बाद इसे वापस करें। तो इससे क्या है कि लोगों में रीडिंग हैबिट बढ़ती है, लोगों में विश्वास बढ़ता है, लोगों तक ये बात पहुंचती है कि हम भी अपनी किताबें डोनेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
0: जी, और इसी तरह से अगर मोबाइल लाइब्रेरी की बात करें तो उसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: 2020 में जब कोरोना आया तो कोरोना में देखा कि बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी थी कोरोना में, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी। तो गवर्नमेंट ने एक अपना गाइडलाइन जारी की कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप स्कूटर पे 2 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। तो इस दौरान हमने देखा कि हमने बच्चों तक तो किताबें पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचाई? तो उसी दौरान हमने एक लाइब्रेरी बनाई कि हम बच्चों के घर तक पहुंचेंगे, उनके घर तक जाकर वो सामान लेंगे। हम शिक्षा का जो बेसिक रिसोर्स है उसकी वजह से किसी के बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। उस दौर में हमने राशन भी वितरित किया, जो भी जरूरी जो सामान है वो वितरित किया। तो वहां से हमने जो है अपनी पहली लाइब्रेरी बनाई, ज्ञान का सफर मोबाइल लाइब्रेरी, जो किताबें लेके जरूरतमंद बच्चों के द्वार तक पहुंचती है।
0: जी, एक और लाइब्रेरी या यूं कहें कि फ्लाइब्रेरी आपने शुरू की, तो फ्लाइब्रेरी शुरू करने का आइडिया आपको कहां से आया?
1: फ्लाइब्रेरी, भारत सरकार इस चीज पे बड़ा जोर दे रही है कि रीडिंग हैबिट है वो बढ़े। जो भी उड्डयन मंत्री हैं उनका एक इनिशिएटिव है कि हर एयरपोर्ट पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पैसेंजर आते हैं उनका जो फ्री टाइम होता है वो उसमें जो है किताबें पढ़े, या फिर अगर वो एरोप्लेन में जा भी रहे हैं तो उस सफर के दौरान भी वो किताबें पढ़े। तो हमने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम है फ्लाइब्रेरी। फ्लाइब्रेरी यानी एरोप्लेन में लाइब्रेरी। तो वहाँ आप जाएं, अपनी मनपसंद किताब चुनें, वहाँ आप बैठ के पढ़ें, और आपका मन कर रहा है वो किताब लेके जाने का तो आप एयरप्लेन में अपने सफर के दौरान उस किताब को अपना साथी बनाएं, उसको पढ़ें, और जैसे ही नेक्स्ट एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो वहाँ कोई लाइब्रेरी बनी होगी, वहाँ जाके उसको ड्रॉप कर दें। और इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं, कई बार किताब इंटरेस्ट बन जाता है, आप लगते हैं पढ़ने के बाद ही देनी है, तो आप हमें वापस पार्सल कर सकते हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी पे है।
0: तो संदीप जी, ये जो आपकी ओपन आईज फाउंडेशन है, पढ़ाई के अलावा किस तरह से जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है, और ओपन आईज फाउंडेशन द्वारा कौन कौन सी और जो है वो गतिविधियां की जाती हैं?
1: हम सिर्फ एजुकेशन का बेसिक रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और बेसिक रिसोर्स में किताब पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, सिंगल पेरेंट ऑर्फन होते हैं, उन बच्चों तक चीजें पहुंच नहीं पाती, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि मोस्टली जो फैमिली में कमाने वाला होता है वो चला जाता है।

0: मोस्टली फादर्स नहीं रहते बच्चों के, तो हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं नया सवेरा नाम से, हर साल देते हैं। और दूसरा हमारा प्रोग्राम है मिशन लिटरेसी, इसमें हम लगभग हर साल 2000 बच्चों को एजुकेशनल किट वितरित करते हैं। इसमें ये भी बच्चे ऑर्फन, सिंगल पेरेंट या बहुत ही नीडी बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन रिसोर्स नहीं है एजुकेशन का, तो उनको हम ये सामान उपलब्ध कराते हैं।
1: संदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की स्कॉलरशिप द्वारा मदद करते हैं, तो योग्यता क्या रहती है, किस तरह से एलिजिबल होते हैं बच्चे इस स्कॉलरशिप के?

0: संदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की स्कॉलरशिप द्वारा मदद करते हैं, तो योग्यता क्या रहती है, किस तरह से एलिजिबल होते हैं बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए?
1: देखिए, एक तो ऑर्फन है, ऑर्फन बच्चे की कैटेगरी स्कूल से पता लग जाती है ऑर्फन है या नहीं है। दूसरा है सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का मतलब है कि दोनों माता पिता में से कोई एक नहीं है। इस केस में ज्यादातर ये होता है, जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो उसमें से 98% यही रहता है कि फादर नहीं होते बच्चे के। और इसमें हमने ये भी ऐड किया है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के फादर हैं और वो वर्किंग है तो उसके हम फैमिली इनकम कंसिडर करते हैं। 2 लाख से कम एनुअल इनकम है और वो ट्राई सिटी में रह रहा है और वो रेंटेड जगह पे रहता है तो उसको ये फैसिलिटी मिलती है बच्चों को।
0: जी, तो हर साल लगभग कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप देते हैं, और ये जो आप एजुकेशन किट की बात कर रहे हैं वो अब तक कितनी बांटी है आपने?
1: हर साल हमारी जो स्कॉलरशिप है हम 100 या 110 के बीच में होती है हमारी स्कॉलरशिप। और मिशन लिटरेसी के तहत जो एजुकेशनल किट है वो हम अब तक 10,000 से ज्यादा बांट चुके हैं और हर साल अब हमारा टारगेट है कि 2,000 किट हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट करें।
0: संदीप जी, क्योंकि आप समाज सेवक हैं, हर रोज कई चुनौतियों का सामना करते होंगे, तो आप हमें ये बताएं कि समाज की तरफ से किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है और समाज से आप क्या अपेक्षा रखते हैं?
1: इस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो सोसाइटी का ही रहा है, मेरे लिए खास तौर पे, क्योंकि मैं एक ऐसा बच्चा था 22-23 साल की उम्र में, फैमिली से मेरे मतभेद थे वैचारिक, तो जो इमोशनल सपोर्ट है वो मिली नहीं वहाँ से, जबकि फैमिली अपनी जगह ठीक है, उनका अपना मानना है, तो समाज के लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे और समाज के लोगों ने मुझे बहुत सारी किताबें दी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि समाज के लोग, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो साथ ना आए, समय जरूर लगता है क्योंकि समाज में तमाम तरह की चीजें होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, बुरी ज्यादा है आजकल, तो इसलिए लोग थोड़ा सा डरते हैं। जब आप पे विश्वास बनता है, आप अच्छा काम करते हैं तो समाज आपको हमेशा अप्रिशिएट करता है।
0: तो क्या समाज की तरफ से आपको कोई आर्थिक रूप से भी सहयोग मिल रहा है?
1: जी बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है, सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम 70-80 लोग हैं, अपनी इनकम का एक हिस्सा उसमें डालते हैं और उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। और अभी समाज के लोगों से मेरा यही निवेदन है, अभी हम भारत का सबसे बड़ा रद्दी से शिक्षा बुक बैंक बनाने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो ट्राई सिटी में बनेगा, और इसमें हम ये पूरे भारत से हम किताबें और जो स्टेशनरी का सामान है यूज वो इकट्ठा करेंगे और उसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा किताबें रखने की कैपेसिटी होगी। और पूरे भारत की कहीं पे भी कोई भी लाइब्रेरी है, स्कूल में है, कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, वो किताबों की वजह से बंद है या वो चल नहीं पा रही, तो उस तक किताबें पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और स्कूली और कॉलेज की किताबों के अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों तक भी किताबें पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है।
0: जी, तो किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, रद्दी से बुक बैंक बनाने की ये जो आप योजना बना रहे हैं, किस तरह से आप इस पर काम कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द आपका ये जो सपना है वो भी साकार हो?
1: इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि सोसाइटी के लिए बना रहे हैं तो सोसाइटी के लोगों के सहयोग से हम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, ओपनाइज फाउंडेशन, अगर हम फाउंडिंग की बात करते हैं तो वो मेरा नाम आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो लोगों का नाम साथ कैसे आए, आज बताते हैं कि आप फाउंडर हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग फाउंडर कैसे बन सकते हैं। तो रद्दी से शिक्षा बुक बैंक में हम 200 फाउंडर बनाएंगे, वो फाउंडर ही उस रद्दी से शिक्षा बुक बैंक को बनाएंगे, वो उनकी ही जिम्मेदारी होगी। जो 200 लोग होंगे उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, उन्होंने 5100 रुपए कंट्रीब्यूशन करने हैं 5 साल के लिए और उन्होंने 5 लोगों को जोड़ना है। अगर हम 200 लोग सारे फाउंडिंग मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे और इस अभियान को हम सिरे से चढ़ा देंगे तो हमारा रद्दी से शिक्षा बुक बैंक बन जाएगा।
0: जी संदीप जी, आप बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि वाकई ये बच्चा जरूरतमंद है और इसको स्कॉलरशिप की जरूरत है?
1: सबसे पहले जो बच्चा होता है, बच्चे का जो ज्यादातर जो जुड़ाव होता है वो पेरेंट्स से होता है और स्कूल से होता है। एक स्कूल टीचर को ये पता होता है कि उसका क्लास का बच्चा है वो कैसा है। हम पहले स्कूल में जाते हैं और स्कूल में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसे बच्चों की लिस्ट दें जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो हमें लिस्ट देते हैं। लिस्ट देने के बाद हमारी वेरिफिकेशन होती है, सबसे पहले हमारी होम वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद हम सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं कि इस बच्चे को कहीं और से बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, और उसके बाद उस बच्चे को वो सारा बेनिफिट मिलता है और उसका एक फॉर्म बनाया जाता है। एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता लग जाता है कि एक साल में एक बच्चे पे कितना खर्च हुआ। और इस अभियान की खास बात यह है, 110 बच्चे हैं, अगर 110 बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो इसके लिए हमने एक खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है कि हर बच्चे का एक डोनर फाइंड किया है। 100 बच्चे हैं तो उनके 100 ही डोनर हैं। समाज में बहुत से लोग होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो 100 डोनर उन 100 बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बस हम तो 20

0: खिचड़ी का काम कर रहे हैं, हम तो गैप को खत्म कर रहे हैं।
1: जी, तो आप किस तरह से मिलाते हैं डोनर और बच्चों को?
0: इसमें ये है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम कोई भी अच्छी चीज करते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं या कुछ खाते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, तो हम व्हाट्सएप स्टेटस पे एक स्टेटस लगा देते हैं कि आज हमारी फैमिली टुगेदर हुई। उसी तरीके से हमने कहा कि क्यों ना हम इन बच्चों की जानकारी लेके अपने स्टेटस पे लगाएं और जो लोग देखें उनको पता लगे भी ये बच्चा वास्तव में ही नीडी है। तो उस तरीके से हमने व्हाट्सएप स्टेटस का सहारा लिया, हमने एक बच्चे की फोटो लगाई, उसके बारे में 3 लाइनें लिखी, बच्चा यहाँ रहता है, इसके पेरेंट्स नहीं, जो भी उसकी कहानी है। तो आप जैसे लोग उसको देखते हैं और हर इंसान चाहता है कि मैं कभी न कभी कोई ना कोई सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दूं। तो वहां से वो कहते हैं कि इसके आप साल का खर्चा बताएं, हम इसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे। अगर 100 बच्चों की बात करूं तो मैं 24 घंटे के अंदर उन 100 बच्चों के सारे डोनर हमें मिल जाते हैं।
1: जी संदीप जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर हम आपकी पसंद का एक और गीत आपको और सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो इस बार कौन सा गीत सुनवाएं?
0: संगीत की बात है तो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।
1: जी बहुत ही अच्छा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं समाज सेवक द बुकमैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार। संदीप जी, आप बात कर रहे थे कि 100 बच्चे आपके पास हैं तो 100 ही आपके पास डोनर हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के लिए डोनर बनना चाहता है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो वो किस तरह से आपकी संस्था के साथ जुड़ सकता है?
1: उसमें अगर डायरेक्ट व्यक्ति कोई आता है तो पहले उसको रिक्वेस्ट करनी होगी। हमारे सोशल मीडिया के तहत बहुत से चैनल होते हैं, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है भी हम कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो सोशल मीडिया पे हमने अपने हेल्पलाइन नंबर है, अगर वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके वो अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट देने के बाद हम बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस डोनर को उस बच्चे से मिलाते हैं, उसके बाद ये सफर जारी रहता है।
0: जी, और संदीप जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपके रद्दी से शिक्षा अभियान का जिक्र किया, आपकी बहुत सराहना की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपको महसूस हुआ और रद्दी से शिक्षा अभियान को किस तरह से राष्ट्रीय पहचान मिली।
1: 2020 में जब हम कोरोना के दौरान काम कर रहे थे, हमने मोबाइल लाइब्रेरी बनाई थी, उसके बाद लगातार हम काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद अचानक से देखा कि वेरिफिकेशन शुरू हुई हमारी, कभी कोई पुलिस डिपार्टमेंट से आ रहा है, कभी कोई शेरडी से आ रहा है, फिर जिन कॉलोनियों में हमने काम किया है उन कॉलोनियों से हमारे पास फोन आने लगे, फिर लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं। जब भी हम बच्चों को कोई भी सामान देते हैं तो हम इतना सामान देते थे कि एक बार बच्चे का काम चले, तो वो कहते हैं आप सरकार से पैसे लेते हो, आप हमें कम सामान दे के जाते हो। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार आ रही है, पूछ रही है भाई ये संस्था आई थी क्या, इन्होंने कोई सामान दिया। फिर देख रहे हैं कि दूसरे दिन फिर जिन स्कूलों में हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ

0: टीचर का फोन आ रहा है, तो आपकी वेरिफिकेशन हो रही है, आपके बारे में पूछा जा रहा है। फिर मेरे मेंटर हैं, उन्होंने बताया भी आपके बारे में वेरिफिकेशन हुई है। यानी चारों तरफ से फोन कॉल्स आ रहे हैं कि आपकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है, क्योंकि डर इसलिए लग रहा है कि मैं एक किसी सरकारी अधिकारी से मिला, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बहुत यंग हो, जैसे आगे बढ़ोगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो मुझे लगा कि सर वाली बात पूरी हो रही है कि हम काम कर रहे हैं, आपको पंजाब के मुख्यमंत्री अप्रिशिएट करें, लोग अप्रिशिएट करें, लोग पीछे पड़े हुए हैं आपके और आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने एक मेंटर के पास गया, मैंने उनसे बात साझा की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप जो काम कर रहे हो क्या वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है? मैंने कहा हाँ जी पूरा डॉक्यूमेंटेड है। आप जो फंड्स लेते हो जितने भी फंड्स आते हैं वो ट्रांसपेरेंटली हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल है। करें फिर आप घबरा क्यों रहे हो? फिर मैंने सोचा हाँ मैं घबरा क्यों रहा, जब मेरी सारी चीजें इतनी बिल्कुल सही है तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है? तो फिर घबराहट तो स्वाभाविक है, लोग पूछेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम में था बापू धाम में, सेक्टर 26 में हम किताबें बांट रहे थे, तो अचानक से मैंने देखा कि मेरे फोन पे इतनी फोन कॉल्स आ रही है बार बार। हम प्रोग्राम में था तो मैं फोन अटेंड नहीं कर रहा था, मैं बार बार उसको साइलेंट कर रहा फोन को। फिर मतलब करीबन आधे घंटे के अंदर लगभग 200 से 300 मिस कॉल्स, और मेरी धड़कन इतनी तेज, मेरे शरीर से पसीना आ रहा, क्योंकि दोनों चीजें चल रही। एक चीज तो ये चल रही कि उस सर ने ऐसे कहा था कि लोग पीछे पड़ जाएंगे और आपको फंसा भी सकते हैं, दूसरी चीज ये कि होगा तो होगा क्या, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ मैं अपने स्कूटर से मैं वापस आया, तो रास्ते में मैंने रोक के मैंने कहा कि मैं फोन मिलाता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जितने भी मिस कॉल्स आई हैं उनमें सबसे सही आदमी कौन सा है जो मुझे सही जानकारी दे सके, ताकि मैं उसको फोन मिलाऊं। और मैंने देवेंद्र शर्मा जी हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, तो मैंने मेरे मेंटर हैं वो, मैंने उनको फोन मिलाया। और जैसे ही वो रिंग गई और उसके बाद मेरी जो धड़कन है वो इतनी तेज है, मैं आपको मतलब शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब तक उन्होंने फोन नहीं उठाया तब तक, और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया उन्होंने कहा बधाई हो संदीप, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपकी तारीफ की है, आपका जो इनिशिएटिव है वो करोड़ों लोगों ने सुना है। और मुझे लगता है ये बात सुनने के बाद जो एक सुकून की जो एक सांस ली मैंने, वो आज तक की सबसे खूबसूरत मुझे वो जो मोमेंट लगता है अपने जीवन का वही लगता है कि एक पल ऐसा था कि घर वाले आपको बुला ही नहीं रहे हैं, दोस्त रिश्तेदार आपसे दूर जा रहे हैं
1: जी,
0: आपको कुछ जानता ही नहीं है, और दूसरा जो देश का राजा है वो इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी तारीफ कर रहा है जबकि आपने वहाँ अप्लाई नहीं किया, आप उसको जानते ही नहीं हो, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये हमारे लिए वास्तव में एक खुशी की बात थी
1: जी। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में आपकी सराहना की, तो आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि शुरुआत में वो आपसे नाराज थे, तो उस दिन से आपकी फैमिली वालों का क्या बिहेवियर है आपके प्रति?
0: हाँ, उस दिन से मुझे लगा कि हाँ मतलब हमारे लड़के ने कुछ तो किया है, मतलब हमारे लड़के ने ऐसा किया है कि किसी ने नहीं करके दिखाया। तो उसके बाद मेरा आना जाना शुरू हुआ है, आज भी हम आते जाते हैं, लेकिन एक जो डिस्टेंस है बीच में वैचारिक मतभेद वो आज भी है, बट वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए थोड़े चिंतित होते हैं कि यंग एज में वो थोड़ा सा सही ट्रैक पे रहे हैं, तो ये फैमिली का होना स्वाभाविक है। लेकिन आज मेरी फैमिली वालों को मेरे पे गर्व है और वे कहते हैं कि कम से कम लीक से हटके किसी एक ने तो काम किया, कम से कम देश और समाज के बारे में सोचा
1: जी। संदीप जी, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप उनको समाज सेवा को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
0: मेरा एक ही संदेश है कि आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद आपका जो भी रिसोर्स बचता है आपने उसे रद्द में नहीं देना है, आपने उसे एजुकेशन का माध्यम बनाना है। क्योंकि जिन किताबों को या जिस रिसोर्स को पढ़कर आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं, एक दिन आप उन्हीं सपनों को रद्द के ढेर में दे देते हैं। तो ये हम सबके लिए सीख है कि आगे से हमने ऐसा नहीं करना है, हमने आसपास ऐसा बच्चा ढूंढना है जिस बच्चे तक हम ये रिसोर्स पहुंचा सके, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो औरों को भी आगे बढ़ाएं। और आपको ऐसे बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें सर्च कीजिए ओपन आइज फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हम आपके घर आएंगे और आपके घर आके वो किताब आपसे लेके जाएंगे।
1: संदीप जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। आपका, आपकी सारी टीम का और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे समाज सेवक द बुक मैन ऑफ चंडीगढ़ और ओपन आईज फाउंडेशन के संस्थापक श्री संदीप कुमार। कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रशांत वशिष्ठ ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के स

आपने सुना सुहाना सफर आकाशवाणी के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र 6 बजन वाले ने ते हुण असी अपने दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार रिले करांगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश

0: लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिनों तक बिहार पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਆਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੀਤ ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਅਤੇ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 36 ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਤੋਂ।

0: Children's Hospital. Call करें 9814128667 पर और मोबाइल से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NSE मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
5: और सुनते हैं अगला गीत फिल्म 3 इडियट्स तो। गीत में आवाज देती है सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे, शान ने

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने 4 इंटीग्रेटेड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों के संचालन से प्रतिदिन 5000 टन कचरे से 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूह में एक कार्यक्रम के दौरान मेवात कैडर के 1054 नव नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। हरियाणा में कई जगह खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने आज नूह में 4 इंटीग्रेटेड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्लस्टर में स्थापित होने वाले इन संयंत्रों में संचालन शुरू होने पर प्रतिदिन 5000 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे कुल 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इन संयंत्रों के अक्टूबर 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी हरियाणा के शहरी विकास को नई ऊर्जा देने के साथ साथ प्रदेश में कचरा प्रबंधन के तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हिसार क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा। इसमें हिसार, हांसी, फतेहाबाद और जींद जिलों के शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। इस संयंत्र में प्रतिदिन 500 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे न्यूनतम 5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होने की उम्मीद है। दूसरा प्लांट अम्बाला क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला जिलों की शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। यहां प्रतिदिन 900 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और न्यूनतम 9 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन अपेक्षित है। इसी तरह तीसरा प्लांट फरीदाबाद क्लस्टर में स्थापित होगा, जिसमें प्रतिदिन 1600 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे न्यूनतम 16 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है। चौथा संयंत्र गुरुग्राम क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें गुरुग्राम जिला शामिल होगा। यहां प्रतिदिन 2000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और न्यूनतम 20 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन अपेक्षित है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने सीएनजी की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 92.01 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण पश्चिम एशिया संकट के फिर से गहराने को बताया है। कंपनी के अनुसार तनाव बढ़ने से होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते एलएनजी की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक एलएनजी कीमतें संकट से पहले के स्तर की तुलना में करीब दोगुनी हो गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज नूह की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान मेवात कैडर के 1054 नव नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा।

0: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए शिक्षकों की तैनाती से क्षेत्र में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात सुधरेगा और प्राथमिक शिक्षा का स्तर और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने सभी को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने नई भर्ती को युवाओं की योग्यता की जीत बताया और कहा कि पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद, जातपात, क्षेत्रवाद और पर्ची खर्ची के हिसाब से नौकरी मिलती थी। बीजेपी की सरकार बनते ही बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख से अधिक योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि यह नियुक्ति उनकी वर्षों की मेहनत और परिवार के त्याग का सुखद परिणाम है और वे अब समाज की आशा है।
1: साथियों, आज से आप हर उस परिवार की आशा है जिसका बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ेगा। साथियों, सरकारी सेवा में वेतन सरकार देती है लेकिन सम्मान समाज देने का काम करता है। वो सम्मान आपने समाज से अपने उस भविष्य को गढ़ करके अर्जित करना है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात जैसे क्षेत्र में जहां परिस्थिति कठिन हो वहां सेवा का महत्व अधिक होता है।
1: जहाँ परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, वहीं पर सेवा का महत्व भी अधिक होता है। जहाँ कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, जहाँ अवसर कम दिखाई देते हैं, वहीं शिक्षक का प्रकाश सबसे अधिक जरूरी होता है। आप जिस विद्यालय में नियुक्त होंगे वहाँ पूर्ण समर्पण के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ आप दीजिएगा। मेवात की धरती में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के बच्चों में साहस, मेहनत, कला और साथियों बुद्धिमत्ता और आगे बढ़ने की इच्छा है। आवश्यकता कहीं मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की है, जो आपने स्कूलों में जाकर के बच्चों को देकर के आगे बढ़ाना है।
0: इस अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले 70 प्रतिभाशाली बच्चों को मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना के तहत 39,90,000 रूपये की सम्मान राशि भी जारी की गई। इस दौरान हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। श्री मांडविया ने सभी लोगों से प्रत्येक सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान पर बिताने और खुद को स्वस्थ रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ युवा और स्वस्थ समाज जरूरी है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज पलवल में हरियाणा स्पोर्ट्स कोऑपरेटिव लीग मल्टीपर्पज सोसाइटी द्वारा महासंग्राम T20 नॉकआउट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष गोपाल दत्त शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
2: क्रिकेट महासंग्राम 2026 का उद्देश्य युवाओं को आगे बढ़ावा देना है, एक अच्छा मंच प्रदान करना है, आगे देश का नाम रोशन करें। अभी टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पुरस्कार सभी को, पहली टीम को 51,000 जो विजय रहेगी, रनर अप को 21,000 रुपए है, 3100 और महा ट्रॉफी आप सभी के बीच में है। सभी को प्रोत्साहन राशि के साथ ट्रॉफी सर्टिफिकेट दिया जाए। युवाओं से अपील है कि नशा से दूर रहे, प्रदूषण ना फैलाएं, पेड़ लगाएं और स्पोर्ट्स में अधिक से अधिक अपना नाम रोशन करें।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डोमरखा में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में डोमरखा, हमीरगढ़ के राजकीय स्कूलों और ग्राम पंचायत पीपलथा की नर्सरियों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान 12 से 22 अगस्त तक पुणे में आयोजित 16वीं जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली गांव डोमरखा की खिलाड़ी अदिति को सम्मानित किया गया। भिवानी के भीम स्टेडियम के हॉकी मैदान में भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर लड़कों और लड़कियों की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लड़कों की प्रतियोगिता में भीम स्टेडियम की टीम ने बापोड़ा की टीम को 2-4 से पराजित किया। वहीं लड़कियों की प्रतियोगिता में भी भीम स्टेडियम की टीम ने बापोड़ा की टीम को 2-3 से पराजित किया। भिवानी के राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल

दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया गया। समारोह के दौरान महाविद्यालय परिसर में 50 मीटर दौड़, पिट्ठू, रस्साकशी, रस्सी कूद और टेबल टेनिस सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आज अम्बाला शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा सरकार ने 4 इंटीग्रेटेड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा, इन संयंत्रों के संचालन से प्रतिदिन 5000 टन कचरे से 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हम तुसी जिंदर शर्मा तो प्रतिशत खबरें सुनो। पहला इस बुलेटिन में खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों ने अपने विचार साझे करेंगे। भारत की सब तो महान खेल शख्सियतों में एक मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन मौके आज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने सूबे के सारे प्रशासकीय सकत्तर के विभागों के मुखियों स्थानीय गृहस्थी समूह छुट्टी च हिस्सा लेने वाले सारे मुलाजमान को कारण दसो नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार वालों मिशन क्लीन पंजाब के दूजे गेड़ तहत 10 दिन सूबे पदरी सफाई मुहिम की शुरुआत। सूबा सरकार ने आश्रित के अनाथ बच्चों के बेहतर भविख लिए 181 करोड़ तो वध रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों ने अपने विचार साझे करेंगे। ये हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 137वां एपीसोड होगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी से दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क आकाशवाणी खबरों की वैबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप से भी प्रसारित किया जाएगा। इसलिए AIR न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री के दफ्तर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल से भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण तो तुरंत बाद प्रोग्राम में क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। भारत की सब तो महान खेल शख्सियतों में एक मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन मौके आज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के अमीर खेल विरसे का जश्न मनाता है और लोगों को खेलों को अपने रोजाना जीवन का नियमित हिस्सा बनाने के लिए उत्साहित करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये 3 दिना देशव्यापी मुहिम 1 घंटा खेल के मैदान में देश सदे हेठ मनाया जा रहा है। इस मौके नु मनाने लिए देश भर विच वख-वख खेल गतिविधियां कराईयां जा रही ने। दिल्ली विच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने आज मुहिम के तहत एक क्रिकेट मैच विच हिस्सा लिया। मीडिया नाल गलबात करदिया डॉक्टर मांडविया ने लोगों नु तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने लिए हर हफ्ते घट्टो-घट 1 घंटा खेल के मैदान विच बिताने का सद्दा दिता। उन्हें कहा कि एक खुशहाल राष्ट्र बनाने लिए एक तंदुरुस्त नौजवान और एक सेहतमंद समाज जरूरी है।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। आज सुबह से मुझे सूचना मिल रही है लाखों की संख्या हर गली में मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा।
3: भारत सरकार खेल सिलसिले में निरंतर निवेश कर रही है जिसके नतीजे विश्व पद्धत वक्त तो वक्त दिखाई दे रहे हैं। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वर्गिया पहलकदमियां खेल सिलसिले को मजबूत कर रही ने खिडारिया उच्च पदरी मुकाबलेबाजी लिए तैयार करने में मदद कर रही ने। राजेश बाली, आकाशवाणी खबर, जलंधर।
2: उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस से देश में बधाई दी है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਵੀ ਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3: ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹੈ ਦੇਵ ਦਰਸ਼ਨ ਧੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀ, ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ, ਕੋਨਸ ਔਰ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ।

फौजी साथियों नमस्कार। आमतौर पर इस कार्यक्रम को पेश करते हैं कुछ जाने माने फिल्म कलाकार, फिल्मी हस्तियां, पर कभी कभी फिल्मी दुनिया से इतर कुछ जाने माने लोग भी विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होते रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं जाने माने भूतपूर्व

हेलो मेरे फौजी साथियों, आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। तो इस तरह के मौके तो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। और मेरा नाम करसन घावरी है, मैं इंडिया का पुराना खिलाड़ी हूँ जो 74 से लेके 82 तक इन्होंने टेस्ट मैच खेला, 39 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया एंड आई केप्ट ऑन प्लेइंग इट टिल 87 इन फर्स्ट क्लास मैचेस इन द कंट्री। एंड आज आपके साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है। और आज मेरे कुछ चुनिंदे गाने हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। और सबसे पहला मेरा गाना है ए मेरे।

फौजी साथियों, मैं सबसे पहले तो इंडियन यूथ को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हो सके उतना इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, उसके अंदर आप लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। या हम जो फिल्मों में हीरो देखते हैं वो सब नकली होते हैं। हमारे जो रियल हीरो है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग सब बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं, बेखौफ जी रहे हैं और कोई बात की चिंता नहीं होती। आप लोगों ने सरहद पे इतनी रक्षाओं की, जो काम की लाइन लगाई है, उसकी वजह से हम लोग सब सुरक्षित हैं। और उसके बाद मैं फौजी भाइयों आपको गाना सुनाना चाहता हूँ कि हम लाए हैं तूफान से कष्टी निकाल के।

फौजी साथियों, मैं आप लोगों से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, जो मेरे जीवन के साथ, मेरे साथ जुड़ा हुआ ये गाना, ये मैं इसलिए आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि आज यू नो 35-40 इयर्स के बाद ये गाना सुनाने का मुझे मौका मिला है। इसलिए क्योंकि जब बचपन में मैं खेल रहा था उस वक्त तो ऐसा कभी ये नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, तो वो दौर का जो हार्ड वर्क होता है, जो कठिनाइयां होती है, जो तकलीफें होती है, वो सब सह के उसमें से पार पड़ के निकल के इंडिया के लिए खेलना तो बहुत बड़ी बात होती है। इस मेहनत के पीछे एक बहुत बड़ा गाना था जो राज कपूर साहब की फिल्म का था कि जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: देव दर्शन धूप देव दर्शन धूप
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिनका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।

0: आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। आज के इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं एक जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है करसन घावरी।
1: मेरे फौजी भाइयों, क्रिकेट के अलावा आप लोगों को जान के शायद थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि बचपन में मैं जब उन्हें 14-15 साल का था उस वक्त मेरी इतनी चाह थी कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो न सका and I was failed and I took up you know the cricket very seriously and ultimately you know I played for India. तो मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आप यू नो एज ए सैनिक करो, चाहे आप क्रिकेटर के मुताबिक करो या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन के दौर पे करो। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि क्रिकेट के दौर में हमने अच्छा खेला, अच्छी टीम भी थी, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेले हैं और जिस तरह से आज जो टीम कर रही है और जब हम खेल रहे थे उसके अंदर और आज के क्रिकेट में बहुत फर्क है। इन लास्ट 20-25 ईयर्स इंडियन टीम हैज नेवर लुक्ड बैक नाउ आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप इन 1983। मेरा दूसरा इन पसंदीदा गाना है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे। गाना है मनोज कुमार साहब की फिल्म का मेरे देश की।

आज इतने सालों के बाद आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला, तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कमिटमेंट होता है, चाहे आप क्रिकेट में हो या सेना में हो या बिजनेस में हो या कहीं भी, कमिटमेंट एक ऐसी चीज है कि मैंने तो बहुत बार देखा है, स्पेशली जवानों के लिए, कि वो जब सरहद पे होते हैं, जब उनके घरों में ब्याह होता है या कहीं नो किसी का बर्थडे होता है या कोई मर भी जाता है, तो भी वो लोग अपनी वो जगह छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनका एक कमिटमेंट होता है। जिस तरह से आप लोगों काम के अंदर जो डेडिकेशन होता है, जो डिसिप्लिन होती है, वो दूसरी जगहों में मिलना बहुत मुश्किल है। स्पोर्ट्स में शायद आपको सर्टन एक्सटेंड आपको मिल सकती है, लेकिन जो हार्ड वर्क, जो डिसिप्लिन और जो कमिटमेंट के साथ आप लोग जो काम करते हैं, वो जो हार्डशिप है उसके थ्रू जाना, वो सबसे बड़ा कठिन काम है। और आप जो करते हो, आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, आप लोग को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती है। और वो सब पार करके आपको कोई ना कोई, जो भी रैंक में होते हैं आप, वहां पर अपना बेखूबी ना अच्छे से अपना काम निभाते हैं, उसके लिए वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और उसके बाद ये जो सोच के मैं आपको गाना सुना जा रहा हूँ, वो है होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है।

वहां तो मेरे फौजी साथी हो, एक बात बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि मैं गाने का शौकीन तो बचपन से हूँ. बिफोर यू नो इवन आई प्लेड यू नो क्रिकेट राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. आई यूज्ड टू वॉच ऑलमोस्ट एवरी फिल्म इन माई नेटिव प्लेस इन राजकोट. सो गाने का शौक अभी भी है और वही शौक बिल्कुल यू नो बरकरार रहेगा आखिरी दम तक. और हमारे पास मतलब यू नो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लेखक है, इतने अच्छे अच्छे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो उन सबको भी सलाम क्योंकि वो एक बहुत बड़े यू नो क्रिएटिव वर्कर्स होते हैं. और आज हम लोग यू नो इतने अच्छे सुंदर यू नो गाने सुनते हैं, जब सुनते हैं और अच्छा लगता है तो वो गाना आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपके दिल में बैठ जाता है. एक दूसरा गाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो गाने का नाम है गाता रहे मेरा दिल, जो देवानंद साहब की फिल्म गाइड फिल्म का गाना था ये. और ये गाना इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि जिंदगी में सब लोगों को खुश रहना चाहिए जितना हो सके. कठिनाइयां तो सबको आती है लेकिन उसका सामना करके उसके ऊपर जीत हासिल करके जब आप आगे निकलते हो तभी ऐसे लगता है कि अंदर एक अपने दिल में एक गाना मचल रहा है कि गाता रहे मेरा दिल.

फौजी साथियों, इंतजार की जो घड़ियां होती है कई बार बहुत लंबी भी होती है, कई बार बहुत छोटी भी होती है, लेकिन सैनिक और जवानों की जो घड़ियां होती है वो ज्यादा करके लंबी होती है, क्योंकि जब वॉर होने का समय होता है तो आप लोग को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग एक टेस्ट सीरीज खेलने गए थे 77 में ऑस्ट्रेलिया में, तो 1947 के बाद 77 तक इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया गई थी उस वक्त में वो लोग हार के आए थे, तो वो घड़िया हमारे लिए इतने सालों की घड़िया थी कि 77 में वी वांट इंडिया टीम वांटेड टू डू वेल। और फॉर्चुनेटली वहां पर ऐसा हुआ मेलबर्न टेस्ट क्रिकेट में, पहला टेस्ट में जिन वो लोग जीत चुके थे, सेकंड वाला ड्रॉ हो गया था, और थर्ड वाला जो मेलबर्न में हुआ वो हमको जीतना बहुत जरूरी था। तो जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कुछ 120 रन करने थे आखिरी बारी में, और हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को 82 में ऑल आउट किया था और वो मैच जीत गए। जब पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में हम लोगों ने जो सीरीज स्क्वायर की वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये इंतजार का फल ऐसे होते हैं। हमारे जवान साथियों, शायद ये सेगमेंट और ये हमारा वक्त का आखिरी गाना हो सकता है, और ये गाना हम सबसे जुड़ा हुआ है, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। तो जिस तरह का काम हमारे जो सैनिक जवान लोग कर रहे हैं, और बहुत सारी लड़ाइयों में बहुत बहुत लोगों ने बहुत बड़ा नाम कमाया, आज भी हर एक दिनों 15 अगस्त को या 26 जनवरी को उनको याद किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर इन्होंने सुनील गावस्कर है या सचिन तेंदुलकर है, ये ऐसे खिलाड़ी है कि ये लोग इन्हों अमर रहेंगे, 100 साल 200 साल के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। जैसे आज भी सर डॉन ब्रैडमैन को 100 साल के बाद भी लोग याद करते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे खिलाड़ी है जैसे गावस्कर साहब है, तेंदुलकर साहब है, उनको क्रिकेट की दुनिया से कोई भुला

0: जवान साथियों, आज आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। और आने वाले समय में कभी ऐसा मौका मिला या मिलने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। और आज आप सबको मेरी तरफ से, हिंदुस्तान अपनी कंट्री की तरफ से, सब आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।
1: आपने सुना जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर करसन घावी का पेश किया ये विशेष जयमाला कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि क्रिकेट के सुनहरे दौर की यादें ताजा हो गई होंगी और करसन घावी का ये कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संयोजन रेणु चतुर्वेदी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिज्ञासा।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात होले होले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: विविध तेरा साथ हमको दो जहां से बुलावा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनाई
1: बुझता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

एकीकृत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने लिए समझौते ते हस्ताक्षर किए थे। एकीकृत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रतिदिन कुल 5000 टन रेंद खूंद तो 50 मेगावाट ऊर्जा पैदा करेंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत विच 3.99 रुपए प्रति किलोग्राम का वादा किया है। नवी दर अज सवेर तो लागू हो रही ने। गुरुग्राम विच CNG 92.01 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अज नू दी अनाज मंडी विच आयोजित एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दौरान मेवात कैडर दे 1054 नवनियुक्त प्राइमरी अध्यापकों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। बोर्ड परीक्षाओं में 90% तो वध अंक प्राप्त करने वाले 70 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना अधीन 39,90,000 रुपए जारी किए गए। भारत के चोन कमिशन ने हरियाणा में विशेष तीव्र शोध मुहिम दियां तरीकों में फिर बदलाव किया है। दावे और इतराज 31 जुलाई तो 30 सितंबर तक दायर किए जा सकते हैं। औरतों

प्राप्त करने वाले 70 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना अधीन 39,90,000 रुपए जारी किए गए। भारत के चोन कमिशन ने हरियाणा में विशेष तीव्र शोध मुहिम दिया तरीकों में फिर बदलाव किया है। दावे और इतराज 31 जुलाई तो 30 सितंबर तक दायर किए जा सकते हैं। औरतों को आर्थिक तौर पर सशक्त स्वय निर्भर बनाने उन्होंने स्वय रुजगार न जोड़न के उद्देश्य संसद मैंबर नवीन जिंदल ने अज कुरुखेत्र नवीन महिला सशक्तिकरण नवीन महिला शक्तिकरण मुहिम की शुरुआत की। अज राष्ट्रीय खेड दिवस से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद याद किया गया। हरियाणा में कई जगह खेड मुकाबले करवाए गए। अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में एक साइकलोथोन का आयोजन किया गया। यह सन हूं तक दुख प्रदेशक खबर एफ एम 107.2 MHz से यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे वेद भारती का चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने कुछ पंजाबी गीत। सब तो पहला आओ सुनते हैं गीत अमरिंदर गिल दी वास्ते विच।

सुधा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। आज के हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है अमरकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का दूसरा और

एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जहरा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन से खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा था। लगभग 8 बजे का समय होगा, सिर में मफलर लपेटे उषाचरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक उसी समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, अरे भाई क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना। हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी, उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे जिसे देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर भोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला वो काबुल वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वही तो जा रहा हूं। रहमत ताड़ गया कि उसका ये जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा। तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ओए ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। ये बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वो अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए, वर्षों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर बड़ी सजधज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की ये नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप

और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो रे, इधर आओ, अरे सुनो तो, अरे जल्दी करो रे। इन आवाजों की कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके एक किनारे पर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास न तो कोई झोली थी, न पहले जैसे लंबे लंबे बाल, न चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वो रहमत है। मैंने पूछा, अरे क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूं साहब। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वो इंसान यहां से टल जाए तो अच्छा था। मैंने उससे कहा, देखो आज हमारे घर कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूं, तुम आज जाओ, आ जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, ओए क्या बच्ची को तनी भी नहीं देख सकता? उसने सोचा हो कि मैंने अब भी पहले की तरह काबुल वाला, ओ काबुल वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आए। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहां तक कि पहले की मित्रता याद करके वो एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लाया होगा। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, देखो आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वो कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वो स्वयं ही आ रहा है। वो आकर कहने लगा, ओ ये अंगूर और कुछ किशमिश और ये बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपका बहुत मेहरबानी बाबू साहेब, हमेशा याद रहेगी, पीछा रहने दीजिए। तनिक रुककर वो फिर बोला, बाबू साहेब आपका जैसी मेरा भी देश में एक बच्ची है।

कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैल चित्र भी नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है और तब वो कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। ये देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वो एक मामूली काबुली मेवे वाला है। मैं एक उच्च वंश का रईस हूं।

बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया, हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिमटी हुई सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया, उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना, बाद में हंसते हुए बोला, ओए लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल सुर्ख उठे, उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आ गई जबकि रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक साफ हो गई थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः उसे पहले जैसी नहीं पाएगा वो। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास, तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट कर काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका, अंग्रेजी बाजा नहीं बजवा पाया, घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगी, सब कुछ हुआ। फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह

हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत श्रृंखला सुनो कहानी अभी आप सुन रहे थे। इसके अंतर्गत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाया गया। वाचक स्वर अमरकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुनो।

आपने सुना फिल्म ओरोमे से आवाज सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत की रचना गुलजार की और संगीत विश्वर भारद्वाज का।

0: shooting with a personal film सितारे जमीन पर से आवाजें अरिजीत सिंह और शुभदा पालकर की थी। गीत के बोल अभिषेक भट्टाचार्य के और संगीत शंकर हसन राय का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालती हुई तो पंक्ति

0: শুধু গোপাল সুজন ফিল্ম ভোট পুষে আওয়াজে শিবা ঘোষাল ও জুবিন নটিয়ালকে নিয়ে গীত কেবল রশ্মি বিরাট ও সঙ্গীত জাভেদ মহসিন খান। समय छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेमिनार के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म परम सुंदरी से आवाज सचिन जिगर और आदित्य कुमारी की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत सचिन जिगर का।
1: आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूली बिसरी गीत, गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म मेट्रो इंदौर से आवाज बादल सुप्रियो की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमल नींदा,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: समय समाचार में कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए

ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया।

0: दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाली चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर

0: आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
2: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपने सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
3: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है। क्या देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक

0: देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं बोध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुनहरी धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।
4: पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाजें अनिरुद्ध रविचंद्र, विशाल अडवाणी और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार और शैलेंद्र के, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र और शंकर जयकिशन।

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म डंके से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे और आरपी सिंह के, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के, संगीत विशाल और शेखर का।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है?
2: नशेदन लड़का आया है कलकत्ते से।
1: गाना सुन लो, उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शेदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोदा आवे सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे।
1: पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बचता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में, कभी उस पग।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: तुम सच कह रहे हो? अरे क्यों, तुम तो बहुत छोटा है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादान है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छी शेर है, देखो मैं तुम्हें ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम गहरा दिन रख ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं पति चाहूंगा।
3: एक कंपनी में लेके कहा था, तुम कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी और कहीं थी।
2: नेमरा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अंकल की गाड़ी ले आती
1: हूँ। उनकी गाड़ी में आई है, मुझे अकल मत सिखा।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को? आज मेरा बर्थडे, मुझे लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ

चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मेद की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

वन का मीट की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे बोझा था वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहां मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम है ना, उन्होंने कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो, तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो आप बोलिए ना ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छे रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसा था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाने का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पू सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे संग किया, उन्होंने जाने जाने के लिए, तो इसका ऑर्डर पहले आया, तो ऑर्डर पहले हम लोग कश्मीर चले गए ऑर्डर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्माया वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग उत्तराजी नहीं बोला था कि डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गए और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में

राजेश खन्ना के साथ एचएस रवेल की फिल्म महबूब की मेहंदी में लीना चंदावरकर की खूबसूरती देखते ही बनती थी।

1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

मंजली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

जब सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में

0: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
1: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनूं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुनी धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत। इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। तुम मेरे सामने हो खिलते फूलों की तरह, तुम्हारी मुस्कुराहटों से रोशन है ये जहां, तुम्हारे नैनों की चमक जैसे सितारे हैं, तुम्हारे होठों की हंसी जैसे बहारें हैं।

चांदनी रात तुम्हारे बिना अपनी चमक खो देती है। साथ बिताए लम्हे उन लम्हों की यादें दिल में मीठी खुशबू घोल देती है। तुम्हारी मुस्कान शहद की बूंद, मेरी नजरों में हो तुम समाए, इन नजरों के अलावा हर नजर से तुम्हें खुदा बचाए।

जिंदगी से मुलाकात एक पल की बात, दिल से दिल की बात जिंदगी भर का साथ, दिल की गहराइयों में एक नई रोशनी छाई है।

0: और अब छायागीत कार्यक्रम से मुझे यानी जी शाम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको पैर मारे, नहीं कॉफ लाइटिंग।

0: खूबसूरती।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1,000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे।
1: पेश ने हुण तक दिया मुख प्रदेशक खबरां। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नूह विच मेवात विकास बोर्ड की 32वीं मीटिंग दौरान वक-वक विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने आज हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम कलस्टर में 4 एकीकृत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। एकीकृत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रतिदिन कुल 5 टन रहिंद खूंद तो 50 मेगावाट ऊर्जा पैदा करेंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.99 रुपए प्रति किलोग्राम का वाधा किया। नवी दर आज सवेर तो लागू हो गई ने। गुरुग्राम में CNG 92.01 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नूर की अनाज मंडी में आयोजित एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दौरान मेवात कैडर के 1054 नवनियुक्त प्राइमरी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बोर्ड परीक्षाओं में 90% तो वध अंक हासिल करने वाले 70 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना अधीन 39 लाख

0: 90,000 रुपए जारी किए गए। भारत के चोन कमिशन ने हरियाणा विच विशेष तीबर सोध मुहिम दियां तरीकां विच फिर बदलाव किया है। दावे अते इतराज 31 जुलाई तो 30 सितंबर तक दायर किए जा सकते हैं। औरतों को आर्थिक तौर पर सशक्त ते स्वनिर्भर बनाने अते उन्हें स्वरोजगार नाल जोड़न दे उद्देश नाल संसद मैंबर नवीन जिंदल ने अज कुरुक्षेत्र विच नवीन महिला शक्तिकरण मुहिम की शुरुआत की। अज राष्ट्रीय खेड दिवस से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद को याद किया गया। हरियाणा में कई जगह खेड मुकाबले करवाए गए। अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में एक साइकलथॉन का आयोजन किया गया। ये सन हुण तक दी मुख्य प्रदेशक खबर। FM 107.2 MHz से यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं। HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सबसे मिलने से नहीं, इग्नोर नहीं, याद करो।
3: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: पेश है पंजाबी गीत नाल सजा प्रोग्राम सुर सांझ। ते सुर सांझ विच सब तो पहला तुहानूं सुणावांगे गीत हर भजन मांगे वास्ते विच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान के दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 679 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बताया कि 200

0: 87 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात 11:05 ते 20 मिंट होने साड़ी अज की सभा खत्म होती है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फिर मुलाकात होगी। तद तक सानू दे इजाजत। जय हिंद।